मित्रों, स्वयं का आदर करना है। आपने समय का कदर किया, समय ने आपका कदर भी किया। उल्टा करोगे तो उल्टा ही होगा आपके साथ भी। मित्रों, यदि आप सुबह उठते ही अपने दिन की योजना बनाते हैं तो आप अपना जीवन भी योजना से जीते हैं। और समय बर्बाद करना आत्मा का अपमान है मित्रों, बिल्कुल आत्मा का अपमान है। दुनिया के सबसे सफल व्यक्ति, ध्यान करिए, दुनिया के सबसे सफल व्यक्ति समय का सबसे अच्छा उपयोग करने वाले होते हैं। इसीलिए जीवन को सफल बनाना है मित्रों, तो समय को व्यर्थ ना गंवाए। सोमा समय को ना फेंक दे बेकार को। दिन भर सूतल लगिए, बोलिए हम कुछ ना हासिल कर पाएगा, खबरदार पास हो गए। समय की गति कभी किसी के लिए नहीं रुकती है मित्रों। अने स्टॉप गियू, घड़िया के टिक टिक टिक टिक चलते हैं, तुम्हारे लिए नहीं रुकेंगे। इसीलिए उसे पहचानिए, सराहिए मित्रों, और सही दिशा में उपयोग कीजिए। सही दिशा में उपयोग कीजिए मतलब सही ओर अपने जीवन को ले जाइए मित्रों, सही ओर।

मित्रों, सुख शांति सांसारिक साधनों में नहीं, अपने सत्यता और सत्य स्वरूप को पहचानने में है।

मित्रों, आपको आज वो बात बतलाने जा रहा हूं जहां पर आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे, यानी

मृत्यु एक अटल सत्य है, इसे कभी नहीं बदला जा सकता है। मित्रों, इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है और चलता ही रहेगा। जिस प्रकार मित्रों, जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। मित्रों, बार बार मृत्यु के बाद आत्मा नए शरीर को धारण करती है। आप भी, मैं भी, सभी लोग मित्रों, ये प्रकृति का नियम है। इसीलिए सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में जीना चाहिए। मित्रों, आज में जी ले।

मित्रों, कल घर को जाना है, मतलब सभी लोग दुनिया छोड़कर एक दिन जाएंगे, यानी हम सभी मरेंगे एक दिन। कोई नहीं बचने वाला है, कोई नहीं। गरीब, धनवान, ताकतवर, दुर्बल, सभी जाएंगे। तुम भी, हम भी। मित्रों, व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुराई कर्म करता है तो वो कर्म उसको अपने जीवन में भोगना ही पड़ता है। तो जो दुख सुख आपको मिलता है ये किसी के कारण नहीं है। कभी कभी हम उंगलियां दिखाते हैं उनके कारण, वो कार्रवाई से ठीक है, मगर आपका कर्म के अनुसार सब कुछ यहां मिले है। तुम्हारे करतूतों के कारण दुख सुख प्राप्त हुए है। मित्रों, और जिस प्रकार सैकड़ों गायों के बीच, ध्यान करना, सैकड़ों गायों के बीच बछड़ा अपनी माँ को खोज लेता है, ठीक उसी प्रकार मित्रों, उसी प्रकार कर्म का फल आपको हजारों की भीड़ में आपको खोज लेगा, आपको खोज लेगा। ऐसुकुयू भगवान कहते हैं, किसी जीव को कष्ट देकर आप मुझे खुश नहीं देख सकते हैं, ये भगवान बोलत है। मित्रों, श्री कृष्ण जगत के स्वामी हैं, उनकी शक्ति कण कण में निवास करते हैं। भाई बहनों, छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट अनुभव कराता है। जैसे आपको दुख किसी ने दिया, मारपीट कर दी, तो आप रोते हैं, भगवान हमके मार दे। आप कहते हैं, देखिए भगवान तो के का करियो, लुकू सहंगा दो दू नंगाई। तो ऐसे मुर्गियां भी, ऐसे बकरिया भी, सभी लोग को पीड़ा होती है। मित्रों, इसीलिए किसी भी जीव को कष्ट देना, किसी भी जीव को कष्ट देना ईश्वर को कष्ट देना है। किसको? ईश्वर को कष्ट देने के समान है। तो सबसे मिल कर रहो, और ना सिर्फ बोलते रहो हम तो सबसे मिल के रहीला, हाँ हम किसी के ना देख के जरीला। तरवेल युना एस्तमंग दो सबके देख के जरे है, अनभली मनावत है, पसो है खबरदार। मित्रों, दीपक का जीवन इसीलिए, सुनिए, दीपक का जीवन, दीपक मतलब दिवाली, इसीलिए वंदनीय नहीं है कि वो जलता, बल्कि इसलिए वंदनीय है कि वो दूसरों के लिए जलता है। दूसरों से नहीं जलता है, दूसरों के लिए। मतलब आप भी दूसरों के लिए जिए ना, अपना भलाई करिए, दूसरों के भी भलाई करिए। हम दूसरे के काहे भलाई करिए, पहले वापन करिए। मित्रों, ठीक है, करते रहो, जैसे जिए चलते रहो। हमारी आस्था की प्रतीक्षा तब होती है मित्रों, जब हम जो चाहे वो ना मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। कुछ भी ना मिले फिर भी भगवान को धन्यवाद देते रहना। अगर सही मायने में आप अपना जीवन बदलना चाहते हो दोस्तों, तो सबसे पहले आपको अपना मन बदलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि जैसा आपका मन रहेगा वैसा ही आपके विचार होंगे दोस्तों, और जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आपका जीवन होगा। नीच विचार रखोगे तो नीचे आओगे, नीचे आओगे। यो फादों
और अच्छे विचार रखोगे, अच्छे विचार रखोगे तो ऊंचाई पर जाओगे मित्रों, ऊंचाई पर जाओगे।

मित्रों, कब मुलाकात आखिरी हो जाए, इस भजन को जरूर सुनिए। आप पूरे भजन को सुनना। धरती पर दोस्तों, धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव है, ठीक उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। युद्ध हो या जीवन सफलता, केवल तीन शास्त्रों से प्राप्त होती है मित्रों, धर्म, धैर्य और साहस। कोई भी मनुष्य दोस्तों, कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। ऊंचा नीचा, जाति पाटी, सब अपने कर्मों से बनता है मित्रों। कुछ पाना है, ध्यान करना, कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, दूसरों पर नहीं, अपने पर भरोसा कीजिए और परमात्मा पर, क्योंकि सहारा कितने भी सच्चे और अच्छे हो, साथ छोड़ ही जाते हैं, साथ छोड़ ही जाते हैं दोस्तों। और धर्म, चाहे जो भी हो, चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो, हिसाब तुम्हारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। मित्र, गरीब है या अमीर ये मायने नहीं रखता, बल्कि वह आपकी बुरे समय में आपका साथ कितना देता है ये मायने रखता है। ये मतलब की बात है मित्रों, ये मतलब की बात है। और आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या हैं, ध्यान करना, कि आप क्या है, बल्कि ये इसे तय होता है कि आप मित्रों, कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता

मित्रों, इस गीत में हमने बतलाया है कि ना जाने कब आखिरी रात, कब आखिरी बात, कब आखिरी मुलाकात इत्यादि इत्यादि हो जाए। मतलब है कि जब दिन भर आप अपने पति पत्नी से, पति पत्नी से, बाल बच किसी से भी झगड़ा करते हो, खूब झगड़ा किया, मस्त धड़ाधड़, रात को सोने जाओ तो बोल दो कि देखो खूब झगड़ा किया है हम लोगों ने, मगर आप सोने जा रहे हो, आराम से सोएंगे, आ राम राम आ, तो आराम से सोएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि अब झगड़ा खत्म, कल सुबह जब जागेंगे फिर से स्टार्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मित्रों, मगर रात्रि को सोने से पहले हमेशा झगड़ा को सलाह कर लिया करो, क्योंकि ना जाने उस रात आखिरी रात, उस रात आखिरी बात, उस रात आखिरी मुलाकात हो गई और एगो टपक गए सवेरे और झगड़ा से गई ले सूते, दन हैप्पी एंड खरू तो प्रॉब्लम, बहुत बड़का प्रॉब्लम आपको मित्रों। खुशी के लिए काम करोगे, खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेंगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी मित्रों, खुशी जरूर मिलेगी। और जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो, ध्यान करना, जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो तो वही अच्छे चीजें आपके जीवन में वापस आती है, हाँ वापस आती है, इसमें कोई संदेह नहीं, ये निश्चित बात है, ये प्रकृति के नियम है मित्रों, यही प्रकृति का नियम है। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही सच्ची संपत्ति मित्रों, यही सच्ची संपत्ति है। हाँ, क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने की, ध्यान करना, क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने ये वाला द्वार है। मांगो नरक में जाए तो रोज झगड़ा करो ना, क्रोध करते रहो, दयोशी फायक हुआ बोलो मित्रों।

सोच लेना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम क्या बोलने जा रहे हैं, व्हाट हा एग्जैक्ट क्यों कहे के हम ऐसे बाटी काने के नित खवून से जैसे नॉर्मल रहल जाए प्यार प्रेम से, क्योंकि कल हम भी आप भी तो मरेंगे, है तो वारों दी प्रॉब्लम हम ना समझ पाए हैं कि प्रॉब्लम हुआ काहे के मित्रों, काहे के हैं।

मित्रों, भगवान कहते हैं मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। आप बचते हो क्यों? आप धड़ाधड़ क्रोध करते हो मित्रों, कितना भी गुस्सा आए स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें, कोशिश करें, मुईती करें, और चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं है। कोई आपको कुछ बोले, चुप रहो, वो खुद समझ जाएगा कि वो बेकार को बक रहे हैं। तो चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं होती है। माफ करना और ना बोलना कि हम ना माफ करा, मीने हो फरकीफें, तब मरो लेके, अगले जन्म में कहाँ जइयो, का करियो, पता ना है, भगवान जाने। तो माफ कर दो, का हो जाए, तुम्हारा कुछ थोड़ो लाश हो जाएगा, आप जीत जाओगे। तुम में कामियां भले ही हजारों हों, गलतियां भले ही हजारों हों आप में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो मित्रों, खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर यानी अच्छा रखते हो। जितना सुनिए, जितना इंतजार परमात्मा आपसे करवा रहा है, समय आने पर वो इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे मित्रों। जब भगवान आपको कुछ देना चाहता है ना, तो पहले इधर उधर सब बिखेर देंगे, पिसलवा इधर उधर फेंक देगा, कोई देखेगे तुम्हें वो सब उरी है तुम्हें वो क्या कहते हैं, खदेलत है। जब आप घबराओगे नहीं, अच्छाई से रहोगे, प्रेम से, तब धीरे धीरे भगवान आपको सब देने लगेंगे। तो आप सोचेंगे हैं ये कैसे, हम तो इसे ना मंगले, हम तो ये कमोना कल में फिर भी हमके मिला था। ये सब भगवान की खेल है मित्रों। कोई समझ पाया है कि आप ही समझोगे, हैं? नहीं समझ पाओगे मित्रों। जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है मित्रों, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। और ना जैसे आप हैं, अच्छा आप नहीं, आपके बगल वाले होंगे तो छोड़ो, आप नहीं तो आप सत्य की राह पर चलते हैं मित्रों। तो मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता रहता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। आपका भाग्य आपके हाथों में है मित्रों। गोरे में कहे गए हैं कि द रेहिश्योर फाइन टू कोम्स ऑफ यू फॉर्म द लीफ दैट बेन यव, और ना कोई और। सत्य से मित्रों धन ध्यान का नाम का बोलत है, सत्य से कमाया धन हर प्रकार से सुख देता है, और छल कपट से कमाया धन दुख ही दुख देता है। आप तो जानते हैं, आप तो करते हैं ना छल कपट वगैरह, चोरी चपाटी, फ्रॉड, लूटमार, नहीं तो आप अच्छे इंसान हैं, तो आपको आपका कमाया हुआ धन सुख देंगे। और जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते मित्रों, तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलते हैं, जड़ नहीं। तो आप क्यों सिद्धांत को बदलेंगे? रास्ता बदल लो, दूसरा तरीका से दूसरा काम ढूंढ लो, हैं? उसमें क्या बात है मित्रों? तो गलत काम मत करिए, नगो दूलाओ लो सानी अंदर से प्रॉब्लम।

मित्रों, जब आप भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, हम अपन जीवन आपके हाथ में सौंप देली, तो उस वादा को पूरा करना भी चाहिए, ना बाद में दूसरों को गाली देने लगो, अपने खुद करने लगो। तो भगवान की का है बोले कि भगवान तू हमारे लिए सब कर, खबरदार लाओ लाओ चीज ना बोला करो। मित्रों, किसी के संगत से आप ध्यान करना हम क्या बोलते हैं, किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लेना वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बनाता है। मित्रों, आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बनाता है। और एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनके विशेषताओं से सीखता है। मगर आप नहीं, हम काहे ओकरे वाला ली, हम काहे उसे सब कुछ सीखी। एक मैन बेहतर दान हैम ऑफ दान हार यू लाओ। खोपड़ी ठीक ना है तो अच्छा चीज देखो तो उससे सीख लो, सीखो। उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, नहीं करो, नहीं तू ही बर्बाद होंगे। क्या होंगे? बर्बाद होंगे। देखो ना आज तक कहां पहुंच लो है? आपका बात नहीं, आपका बात हम ना बोलत हैं। अभी नाराज हुई है कि परदेशी बाबा हमके का बोलत है। वो जो तुम्हारे पीछे खड़ा है ओके हम बोलत हैं मित्रों। और संबंध बड़ी बातें, सुनिए, संबंध बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। अपने भौजी देवरनिया या कोई भी रिश्तेदारी को बड़का बात ना सुनाओ, तू धनवान है तुमको बड़का बात बिहान गिर जाइयो है, रावण भी गिर गए ना, तो तू बचियो। आपका बात नहीं बोलत है, क्षमा आपका नहीं, किसी और के बात बोलत है मित्रों। और यदि सब कुछ खो कर भी आप में कुछ करने की हिम्मत बाकी है, ध्यान करना, तो समझ लीजिए आपने कुछ खोया ही नहीं है। कर्म ही सबसे बड़ा धन है मित्रों। कर्म करते रहो, करते रहो, कर्म ही सबसे बड़ा धन है। हाँ, और ना ही कुछ और, जैसे लोग बतलाते रहते हैं, कान का लोग आप लोग को सिखाते रहते हैं। मित्रों, खबरदार, इन सब चीजों से बच के रहना, बच के रहना है।

मित्रों, हम अनेक तरह की भजन गाते हैं, समझाने के लिए वो खुद भी समझते हैं, कोशिश करते हैं। मित्रों, परमात्मा कहते हैं कि उपदेश देते हुए कहते हैं भगवान, व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है। आप और मैं कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है, जिससे हमारा अगला जन्म या भविष्य बनेंगे, और बिना कर्म किए कोई नहीं रह सकता। कोई जरूर कर्म करो, अच्छा कर्म करते रहो, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना जो कर्म करते हैं उसका परिणाम ना सोचो कि का मिली का ना मिली, वो छोड़ दो। उसके किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, कर्तव्यों का पालन करते रहो। कौन फल मिले या ना मिले, जैसा कर्म करोगे वैसे ही फल मिली है। एगो पुराना कहावत, जो बोएंगे वही काटेंगे आप ना। आम के पेड़ बोइयो तो कहाँ रोज के फूल मिले है, समझ लेना मित्रों। फिर भगवान कहते हैं कि कर्म का मार्ग दिखाते हुए कहते हैं भगवान कि अपने कर्म हमेशा समाज के प्रति और मानव कल्याण के प्रति केंद्रित करते हुए करो। अपने लिए भी करो, दूसरों के लिए भी करो मित्रों, और बाकी फल के चिंता मत करो। और उन सभी कर्मों को मुझे समर्पित करो, भगवान बोलत हैं कि हमको समर्पित कर दो सब जो करत बाटे आप। इस मार्ग को अपना कर मित्रों तो मुझे प्राप्त कर सकते हो, तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो, भगवान बोलत है, हम नहीं बोलत है। तो अच्छा काम करो फिर भगवान के प्राप्त करो, और बुरा काम करो तो फिर राक्षस बनो ना, मेरे प्रेम के भागीदार बन सकते हो। भगवान बोले अच्छा कर्म करने से तुम मेरे प्रेम के भागीदार बनोगे, और का चाहिए आपको है, इससे अच्छा चीज ना और कौन सी मिलेगा आपको। मित्रों, हम तो कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं आप भी कोशिश करिए, भगवान जाने आगे का होगा। मित्रों, इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है मित्रों, कल वो किसी और का था, ध्यान करना, कल वो किसी और का था, परसों वो किसी और का होगा। तुम यहाँ खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे, खाली हाथ जाओगे, कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हम सफर कोई नहीं है। अनुदेव भगवान सबसे बड़ा मित्र है। खुशी आजादी पर निर्भर होती है मित्रों, आजादी, और आजादी इस बात पर निर्भर होती है कि आप कितने साहसी हैं, कितने मेहनती हैं, कितना मेहनत करे बाटे तू।

कि उमरिया बीती जाए, उमरिया चलत है, घड़ियां टिक टिक टिक टिक चलत है और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये पता है कि आगे में एको बड़का होल है जो इंतजार करत है, वही में गिरेंगे। जितना खेत कमाई है सब यहीं रह जाएगा, सिर्फ एक ही छोटी सी जगह दुई मीटर लंबा हो या ताकत ब्रेत है और गहराई है, या तुम्हें आग में झोंक देंगे, बारबेक्यू कर देंगे, बस खलास। तो मित्रों, ये जो हमने आपसे बतलाए हैं इसे कुछ सीख लो, सीखो, हम भी सीखते हैं। हम बोलते हैं मैं, फिर भी हम सुनते हैं क्या बोलत बाटी, बाद में हम सुनत बाटी भी क्यों, बोलते समय में ध्यान न रहे कि क्या बोली, खोपड़ी में आवे बोल देवत हैं तो बाद में सुनत हैं, तो हम भी जीवन में उतारने की कोशिश करत हैं। तो मित्रों, आप भी जरूर कीजिए ना, जीवन में उतारिए। मैं बार बार यही कहता हूँ कि प्रभु आप मुझे मिलो या ना मिलो ये तो आपकी इच्छा है भगवान, मगर मुझे उनसे मिलवाते रहना जो आपसे मिल चुके हैं या बिल्कुल आपके करीब है। मित्रों, तो हम आपसे मिल करके बहुत खुश हैं, भगवान आपका कल्याण करे, खुशी से रहो, बुराई छल कपट किसी से ना करो, चोरी चपाटी ना करो, आपके सामने आएगा। मित्र, प्रेम से रहो, विश्वास के साथ रहो, भगवान पे भरोसा करो, कल्याण हो, कल्याण हो।

धरती माँ से सदियों से पूरे प्राणी मात्र का अटूट संबंध रहा है। धरती माँ का उपकार न तो कभी भुलाया जा सकता तथा ना ही उसकी अवहेलना की जा सकती है। धरती माँ जिसने हर प्राणी मात्र के लिए सुख सुविधा आशाएं एवं इच्छाएं प्रदान की है, वह स्वर्ग से भी बढ़कर है। इसलिए धरती माँ को स्वर्ग से भी महान कहा गया है। हम सभी को धरती माँ के उपकार को कभी नहीं भूलना चाहिए। धरती माँ हमारे लिए पूजनीय एवं वंदनीय है। हम इस माँ को हृदय से शत शत

सन्यासियों की तपस्याएं और यज्ञ इस धरती माँ के ऊपर ही पूर्ण होते हैं। ये धरती माँ सभी की अर्ज कबूल करती है। ये माँ पापों का विनाश करके घट घट में प्रकाश

हरे भरे बाग बगीचे इस धरती माँ को स्वर्गों से भी सुंदर बनाते हैं। जंगल झरने पर्वत सागर सब इस माँ के आभूषण हैं। ये माँ हमें निरंतर ही पानी और हवा देती है।

अबला नहीं है, राम सिया बजरंग बली, राधा और श्याम का इस माँ के ऊपर डेरा है। इस धरती पर बड़े बड़े योद्धाओं ने बड़े बड़े युद्ध किए हैं। महाभारत जैसा भीषण यानी शक्तिशाली युद्ध भी इस माँ ने झेला है। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर भी इस धरा के ऊपर हुए हैं, जिन्होंने अपनी तपस्या से

काशी जैसे पवित्र स्थान भी इस माँ के ऊपर बसे हैं। न जाने कितने देवी देवताओं के सिद्ध पीठ इस माँ के ऊपर बसे हैं। खुदा ने भी अपनी आयतें इस माँ के ऊपर लिखी है। द्वापर सतयुग, त्रेता और कलयुग इस माँ ने देखी है। धरती माँ से जुदा होकर कोई भी प्राणी नहीं रह सकता।

से सबकी भलाई निष्काम ही करती आ रही है। ये मैया ममता की छैया निरंतर

ब्रह्मांड में इस धरती माँ का कद यानी ऊंचाई सबसे बढ़कर है। सारे संसार की जननी धरती माँ का कर्ज आज तक कोई भी नहीं चुका पाया। सबकी ही मुश्किल ये माँ आसान कर रही है। सारे संसार की चाबी इस मैया के हाथ में है। बड़ी उपकारी

धरती माँ पर आश्रित हो जाते हैं, वो प्राणी संसार में ध्रुव के तारे के समान बन जाते हैं। इस माँ की पूजा करने वाला स्वर्गों सा सुख इस माँ से पा लेता है। ये माँ सारे संसार की

यह ऐसा प्राणी नहीं है जिसका धरती माँ पे डेरा ना हो। हर प्राणी, हर वस्तु इस धरती माँ का है और धरती माँ हर प्राणी और हर वस्तु की।

फल और फूल देती है और बदले में कुछ नहीं लेती है। इस माँ ने हमें सोने को रात दी है और जगने को दिन दिया है। धरती माँ की सेवा ही

धरती मैया वैकुंठ की शान है। हर प्राणी का इस पर ही जन्म होता है और इस पर ही मुक्ति होती है। ये माँ पूजनीय है,

धरती माँ से बचकर कोई भी नहीं रह सकता, सारा संसार इस मैया के अधीन है। जो प्राणी इस मैया की सच्चे मन से जय बोलते हैं, वो प्राणी संसार में ऊंची पदवी पा जाते हैं और कभी दुनिया में डावाडोल नहीं होते। इस मैया की गाथा का शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता।

प्यारे भक्तों और प्यारे प्यारे बच्चों, इस धरती माँ की गाथा को सुनकर इस पर आप अमल करें और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, फिर इस धरती माँ का चमत्कार आप अपने जीवन में महसूस

0: की बातें याद करो, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। कितनी अच्छी अच्छी बातें वो सिखाती थी तुम्हें।
1: बेटा आओ, आओ, आओ सब मिलके वो गाना गाए जो तुम हमेशा अपनी माँ के साथ गाते थे। गाओगे ना? आओ, आओ गाए।

हर काम के लिए, हर एडवर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9 6 5 3 7 5 2 2 7 4। Of mail ons op info@fahunfm.nl.

जी हाँ, हमारे प्यारे सुनने वालों, आप सब द एवरग्रीन लव फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो पे चुने और आज सुबह है, सुबह का प्रोग्राम है। मैं अनिल सारजू इस प्रोग्राम को कर रहा हूँ और आज भजन का प्रोग्राम है। एक घंटा का प्रोग्राम हम चलाएंगे, सिर्फ भजन ही होगा। और अगले भजन तो मैंने रख चुका है जगजीत सिंह का, लेकिन ये बताना चाहता हूँ कि ये जो अभी आप सुन रहे थे हनुमान चालीसा, उसमें बहुत ही ताकत है और बहुत ही ज्ञान वाले भजन है। इसके सुन के बहुत ज़्यादा ज्ञान आ सकता है। हर लोग जो इस वक्त इस अपने पूजा पे और हनुमान चालीसा को सुनते हैं, सुनते ही रहना, और इसमें बहुत ही ताकत है, बहुत ही ज्ञान है। आगे इस ज्ञान को बांटना हम लोग के काम है, ज़रूर आगे इस ज्ञान को बांटना चाहिए। हे राम हे राम हे श्री राम, चलो हम सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज़ से।

जहां दोस्तों जगजीत सिंह की आवाज से भी आप सुन रहे थे हे राम मंगलवार आज का जो प्रोग्राम है भजन का प्रोग्राम है दोस्तों। चलो मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इस भजन में कुछ बातें ऐसी हैं जो हर भजन के दिन मेरा मैं इस भजन को आप तक पहुँचाता हूँ सुनाता हूँ। इस पे एक अच्छा बात है कि इस भजन में अगर आप जोन रूप में जैसे भी भगवान से प्रार्थना करते ही अगर इसे आप बजा के अपना हाथ जोड़ के आँख बंद करके दो फूल लेके चढ़ाते हैं और पूरा भजन को सुनते हैं हर एक चीज पूरा हो जाता है। इस भजन में एक ऐसा दम है कि हर एक चीज पूरा हो सकता है। हम लोग इंसान हैं और भगवान को बुलाना नहीं चाहिए। ये हे राम यही कहते ही जय जोन रूप में हमें पुकार बाकी बुलाओ एक फूल लेके अर्पण कर और हे राम करके मुझे बुलाओ तू ही माता तू ही है पिता है। ये भजन में कुछ बहुत इस ऐसा दम है कि सोचने वाली बात है हमारे सुनने वाले कुछ तो बात है इसमें। ठीक है चलो हम आगे आप लोग चले जाते हैं आप एवरग्रीन फोन पे चुने दोस्तों।

सबसे नटखट लीला माखन चोरी, उसी पर यह भजन सूरदास जी ने लिखा है जो बहुत प्रसिद्ध हुआ। कन्हैया आस पड़ोस के घरों में माखन चोरी करने जाते थे और गोपियां शिकायत करने आती थीं यशोदा के पास कि यशोदा तुम्हारे बेटे ने हमारे घर में बहुत उपद्रव किया, बहुत नुकसान कर दिया। तो यशोदा गुस्से में कन्हैया को बुलाती, उनसे कहती, कन्हैया ये सब क्या करके आए हो, देखो सब तुम्हारी शिकायत करने आई है। तो कन्हैया बड़े भोलेपन से मुस्कुरा के कह देते, मां इन सब की बातें मत सुनना, ये सब झूठ बोल रही हैं, ये तो सब बहाना बना के आई हैं मुझे देखने। बस बात वहीं समाप्त हो जाती। लेकिन आज कन्हैया ने अपने ही घर में माखन चोरी की और मां ने देख लिया। बाद में अचानक मां पूछ बैठी, कन्हैया तूने माखन खाया है क्या? अचानक पूछा था तो कन्हैया के मुख से अनायास निकल गया।

हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत की विशेषता है कि रागों की रचना हुई है समय के अनुसार, अलग अलग समय के अलग अलग राग हैं, मौसम तक के राग हैं। यहां वर्णन है भोर और सांझ दो समय का। नियम के अनुसार दोनों के अलग अलग स्वर होते हैं। आप ध्यान दें, मैं आपको भोर भोर के स्वरों में और सांझ सांझ के स्वरों में सुना रहा हूं। मेरा प्रयास है, शायद आपको लगे कि ये भोर है और ये सांझ है।

जरा सोचो, मैं इतना छोटा सा बालक हूँ, छोटे छोटे हाथ हैं मेरे, मैं कैसे माखन चुरा के खा सकता हूँ? और ये कहाँ तुम टांग के रखती हो,

मुस्कुरा दी, इशारा किया, कन्हैया क्यों बातें बना रहे हो, ये जो मुंह में माखन लगा है ये कैसे लग गया। कन्हैया ने सोचा ये तो बड़ी भूल रह गई।

कोई असर नहीं हुआ। अब थोड़ा गुस्सा दिखाया, कहने लगे, मां एक लाठी और एक कंबल मुझे दे दिया है और सुबह सुबह भेज देती हो गाय चराने, कल से ये काम मुझसे नहीं होगा।

माँ कुछ ज्यादा कठोर हो गई थी। कन्हैया का गुस्सा भी सह लिया। अंत में कन्हैया ने ऐसी बात कह दी, कोई माँ नहीं सुन सकती, वो तो यशोदा थी।

जलोथा की आवाज अभी आप सुन रहे थे, मैं नहीं माखन खाई। ये गाना कुछ 16 मिनट का गाना था, मैंने इसलिए इस गाने को सुनाया है कि आप देख सकते हैं कन्हैया ने अपने माँ से 16 मिनट झूठ बोला है, 16 मिनट बात तो भी कन्हैया ने सच कहा है, मैं नहीं माखन खाया दुनिया भर के बबाल से बतियात बतियात। लास्ट पे कन्हैया बोलिस मैंने ही माखन खाया है। ये कुछ दम है झूठ है, ये दो तरीका का झूठ है, एक झूठ है जो झूठ बोलने बोल सकते हैं और एक झूठ है जो झूठ नहीं बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम चलते ही आगे और कृष्णा के फिर एक भजन है जो जज सिंह ने गाया है।

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे हरे रामा हरे कृष्णा, ये भी भजन है जो हम लोग सुन सकते हैं हमारे प्यारे सुनने वालों। चलो हम आप लोग को सुनाते हैं एक बार फिर से अनूप जलोथा को।

जी हाँ दोस्तों, बोल मेरी तकदीर में क्या है, मेरे हम सफर अब तो बता, मूवी हरियाली और रास्ता नई खतीन तो शस्त्र का, जिसपे मनोज कुमार माला सिन्हा ने काम किया है, शंकर जय किशन का म्यूजिक है। चलो हम ले चलते हैं एक बार फिर से हरियाली और रास्ता से निकाला हुआ एक गीत है, एक गाना है जो लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज है, और देखा जाए शंकर जय किशन का म्यूजिक है, लाख तारे आसमान पे।

जी दोस्तों, दिल मेरा चुपचाप जला, हरियाली और रास्ता, नहीं खतीन ट्विन सेस्ट का फिल्म में मूवी, मनोज कुमार माला जीना ने इसमें काम किया था। अभी आप सुन थे मुकेश और लता का आवाज। हमने चलते ही एक बार फिर से हरियाली और रास्ता का बोले, कहीं कहीं पे राजा और रानी भी रहता है ना, तो चलो राजा और रानी के बारे में हमको सुनाते हैं और हरियाली और रास्ता का निकाला गाना है।

जहाँ दोस्तों एक बार मैंने फिल्म से चला दिया था हरियाली और रास्ता का, मुझे बहुत पसंद है ये गाना। हम सोचते हैं आगे में आप लोग के भी पसंद है। तो ठीक है, एक था राजा एक था रानी।

जा दोस्तों बोले नाव तो खो गया, रह गया पानी। फिल्म हरियाली और रास्ता से भी आप सुन रहे थे, एक था राजा एक था रानी, नेकदिन टू इंसेस्ट का है, मनोज कुमार माला सिन्हा ने काम किया है। चलो हमें चलते हैं दोस्तों हरियाली रास्ता का नेकदिन टू इंसेस्ट का फिर से एक बार देखा जाए तो कौन सा गीत मैंने रखा है यहाँ पे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे। शंकर जय किशन का म्यूजिक है।

जहाँ दोस्तों इब्तदाई इश्क में हम हरियाली और रास्ता का निकाला हुआ गाना है, काफ़ी अच्छे अच्छे गाने हैं और ये मूवी भी काफ़ी अच्छी मूवी है। हम एक बार फिर चले चलते हैं ये हरियाली और रास्ता।

ये हरियाली और रास्ता मेकिंग ट्वीन सस्ता का मूवी है, मनोज कुमार माला सिन्हा ने काम किया है। चलो एक गीत और है, बहुत ही बढ़िया गाना है, बहुत ही अच्छा गाना है, तेरी याद दिल से भुला ना सकूंगा। करोड़ों का दिल जीतने वाला मिलियंस ऑफ हार्ट, मुकेश का गाया हुआ गाना है। चलो हम सब मिलकर सुनते हैं हरियाली और रास्ता का ये निकाला हुआ गाना है, नेकेटिन का है जे। ये फिल्म बिना देखे से उसे देख सकता है, काफ़ी अच्छी फिल्म है, मूवी।

0: से
1: जहाँ दोस्तों तेरी याद दिल से भुला ना सकूंगी, मूवी हरियाली और रास्ता नहीं कहती द मिलियन ऑफ आर्स नाइट मुकेश की आवाज थी, शंकर जयकिशन का म्यूजिक थे, एक आखिरी गाना है फिल्म हरियाली और रास्ता का, हम सब मिलके सुनते ही परवानों की रात, आशा भोसले इस गाने को गाया है, नहीं कहीं तो इस शस्त का है

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे एक आखिरी गाना मूवी हरियाली और रास्ता का। आशा भोसले ने गाया था, मनोज कुमार मलाजीना ने इसमें काम किया है, नेहा ट्विंस का है। ठीक है दोस्तों, हम चलते ही मूवी में आप लोग के लिए चलते नेहा वेफन शस्तक में। जौहर महमूद इन गोवा, आंखियों का नूर है तू, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ है दोस्तों। सुलेमान कल्याणपुर जो इसका सिंगर है, सुलेमान कल्याणपुर और मुकेश ना लता मंगेशकर नहीं है, सुलेमान कल्याणपुर और मुकेश की आवाज़ है। कल्याण जानन जी का ये म्यूजिक है। और देखा जाए आप लोग के हमले चलते हैं नेहा ट्विंस फैफन सेस्टक में, आँखियों का नूर है तू।

जी दोस्तों, आँखियों का नूर है तू, आँखियों से दूर है तू, जुलेमान कल्याणपुरी और मुकेश की आवाज़ अभी थे। लेकिन 5-6 तक का ये गाना है और फिल्म हैगा जोहर महमूद इन गोवा। चल हम एक बार फिर से आपको ले जाते हैं लेकिन 5-6 तक में जोहर महमूद और गोवा के एक बहुत ही अच्छा गाना है, अच्छा गीत है मन्ना दे और पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी का, और इसका म्यूजिक सजाया गया है कल्याण जी, आनंद जी और लाला जालाबादी, इसका जो लिरिक्स लिखा है दोस्तों। चलो मिलकर हम सुनाते हैं

चले हे चले हे चले हे ससुरार। अभी आप सुन रहे थे जोहर एंड महमूद इन गोवा, लोदो दीवाने दिल के चले हे देखो मिल के, महमूद सिमी अग्रवाल और जोहर इसमें काम किया इस मूवी में। चलो हम ले चलते हैं एक एक ऐसा गाना है फिल्म जोहर महमूद के, जोहर इन महमूद इन गोवा ने कितने फैंस आज तक में। और देखा जाए तो एक जो गाना अब हम रखें बहुत वही गाना है और हम सब मिल के सुनेंगे, उषा खन्ना गाई से और मुकेश इसका जो म्यूजिक बजाई से कल्याण जी आनंद जी है, और वहीं जलाबादा जलाबादी का ये लिखा हुआ गाना है। हम आप लोग के सुनाते हैं दोस्तों एक ऐसा गाना जो हम बहुत दिन न सुन ली है और बहुत मन की सुनत, काफ़ी लोग जो प्रोग्राम को सुनते हैं, और अभी ये गाना आप सब के नाम है दोस्तों।

करने की बारी न कोई रहा है न कोई रहेगा जोहर महमूद इन गोवा नेकन तीन फैंस सस्ते का गीत था दोस्तों। हम थे आपके आपके साथ अनिल सरजू जो पूरा प्रोग्राम को आपको सुनाया है और उम्मीद है आप लोग के ज़रूर पसंद है ये प्रोग्राम। ठीक है दोस्तों अभी ठीक है यहाँ से हम कहते ही अपना आप सबको राम राम।

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे सत्यम शिवम सुंदरम, मूवी का नाम यही है जिसमें काम किया था सिन्हा तमन शशि कपूर ने। ऐसे ऐसे कुछ गाने हैं जो हम आप लोग तक पहुंचाऊंगा आज, और हर एक को एक बार मैं फिर से सुबह कहता हूं और आगे चलेंगे।

0: जी हाँ दोस्तों, ए मालिक तेरे बंदे हम, अभी आप सुन रहे थे भजन के अंदाज में ये सब गाने हम आप लोग को सुनाते हैं। कुछ अच्छे अच्छे गाने हैं जो हम आप लोग को सुनाएंगे और हम मिल के सुनेंगे।
1: अरे जगमग

जी हाँ, हमारे सुनने वाले कहते हैं मुझे अपने शरण में ले लो माँ। ऐसे होते ही जिंदगी में जीते जीते दुखों से लोग भर जाता है मन, तो कहते ही मुझे अपने शरण में ले लो माँ। अच्छी बात है, ऐसे जिंदगी में हो रहा है, दुनिया में हो रहा है। ऐसे थकान सा लग जाते हैं और कुछ टूट जाते हैं जो लोग, बहुत प्रॉब्लम होता है, तो यही कहना पड़ता है मुझे अपनी शरण में ले ले राम। अच्छी बात है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। महेंद्र कपूर की आवाज़।

जी हाँ दोस्तों, भी आप सुन रहे हर एक माँ जो माँ है, इसी भजन जो गाया है हर एक माँ के, जैसे हम आप लोग के बताना चाहते हैं, तो माँ के चरण में हर एक सुख है, हर एक चैन है, जितना चैन माँ के गोद में है उतना चैन कहीं नहीं है। हमारे भाई और बहनों जो प्रोग्राम को सुनते हैं, ये चैन जो मिलते हैं, सुगुन जो मिलते हैं, वो माँ के चरण में है, उससे बढ़िया बात और कुछ भी नहीं है। हमारे माँ भी है, जितने माँ है जहाँ प्रोग्राम को सुनते हैं, माँ आप ही के चरण में है सुख चैन, आपके शरण में, आपके गोद में है। चलो दोस्तों, सुबह का प्रोग्राम है, आज मंगलवार है, घड़ी की तरफ देखा जाए तो हलफ नहीं चल रहा है, हलफ नहीं हो रहा है। हम आप लोग के एक भजन आप लोग को सुनाना चाहते हैं, जो फिल्म बाईजू भंवरा का है, 1925 तक में इस फिल्म बना है, और म्यूजिक बजाए है नौसाद ने, और लायरिक्स दिखाए शकील बदायूनी ने। हम आप लोग को सुनाते हैं कुछ ऐसे भजन है जो शायद आप लोग कभी गाने को नहीं सुना है, तो हम आप लोग के सुनाते हैं।

0: हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम
1: दर्शन भिक्षा दे दो दर्शन भिक्षा दे दो दे दो
0: मनोहर मोहन गिरधर हरिओ।

जी हाँ, हमारे दोस्त अभी आप सुन रहे थे पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, और मूवी था देखा जाए बायजू भौरा का, जो निकंदिन 2005 तक में फिल्म को निकाला गया था। ठीक है दोस्तों, हम आगे चलते ही और आप लोग के साथ हम हैं, आप लोग मेरे साथ हैं, हम आप लोग के साथ हैं, और कुछ अच्छे अच्छे गाने जो है भजन के रूप में, भजन के अंदाज में है, और हम आप लोग के लिए चलते हैं महेंद्र कपूर की आवाज़। देखा जाए वही है जी, नहीं अच्छा ठीक है, हम आप लोग को सुनाते कि बहुत ही अच्छा भजन है।

जी हाँ, हमारे सुनने वाले कहते हैं शक्ति दे माँ, सच ही कहाँ है, सच में ये मांग रहा था। अगर आप इस गाने का क्लिप देखेंगे तो सच में इस गाने को मांग रहा था माता रानी से कि मुझे शक्ति दे कि हम सब चीज सह सके और सब चीज दुनिया में हम कर सके। लो अली पोसती फदिंग नाटिल्लक। ओके दोस्तों, आगे चलते ही आप लोग के सुनाते हैं।

जी हाँ दोस्तों, तुम ही हो माता, तुम ही पिता और सखा भी तुम ही हो। ये एक छोटा सा बच्चा है जो इस फिल्म में खेला है मैं चुप रहूँगी, और कृष्ण भगवान को अपना गुरु मानते थे। उसे देख के ये बहुत खुश हो जाते थे और कहने लगा, तुम ही हो माता, तुम ही पिता, तुम ही हो बंधु। क्या अच्छी बात है अगर आप इस फिल्म को देखेंगे मैं चुप रहूँगी। चलो दोस्तों, हम आगे ले चलते ही और प्रोग्राम को आप तक सुनाऊंगा। और आप सब चुन है द एवरग्रीन लव फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे। मैं हूँ अनिल सारजू, जो अब से लेकर 12 बजे तक आपके साथ दूंगा।

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे फिर से माँ शेरावाली दुर्गा माता की ये जो भजन है माता रानी के है। जैसे कहा है कि अगर माँ के हाथ बच्चे के सर पे हो जाए तो कितना चैन है, हर एक दुख से हम दूर हो जाते हैं। और ये ऐसा बात भी है, माँ के हाथ सदा बच्चे के आशीर्वाद देने के लिए उठ जाते हैं। भाई हमारा बच्चा ऐसे रहे, चैन से रहे, हर एक माँ यही चाहते हैं और हर एक बच्चा को भी माँ को सोचना चाहिए। यही भजन में गाय से ये भजन गाय से सोनू निगम, और क्या बढ़िया भजन है, हम लोग के समझना चाहिए क्यों क्या गाया है। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं पूरब और पश्चिम से एक भजन है, ओम जय जगदीश। चलो हम उके भी मिन के सुनते हैं, एक मंत्र है, हम उसे सुनेंगे, प्यार से सुनेंगे, दिल लगा करके सुनेंगे।

जी हाँ दोस्तों, नैना बरसे रिम झिम रिम झिम, द क्वीन लता मंगेशकर की आवाज अभी आप सुने थे। मूवी वो कौन थी, नहीं कहती वीरन शस्त्र का, जिसमें मनोज कुमार ने काम किया है। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं और लाइनें खुल चुका है, आप मुझे ऐप कर सकते हैं। देखा जाए तो 11 बजे से 12 बजे तक हम सिर्फ फरमाइश से सुनाएंगे। मेरा जो सवाल था, मैं एक बार फिर से कहता हूँ, और प्रोग्राम का नाम है सवाल और जवाब। सवाल था कि दो हाथ होते हुए थपोड़ी नहीं बचता है, नहीं बचा सकता हूँ, उसका हल मुझे चाहिए। काफ़ी हल आ चुका है और एक घंटे हम लेंगे, 11 बजे से 12 बजे तक हम आपके फरमाइश से सुनाएंगे। और जो और लोग हैं जिसे फरमाइश मैं नहीं सुना पाऊंगा आज, तो फ्राइडा के शुक्रवार को फिर रहेंगे, फिर हम चलेंगे, हर एक की फरमाइश मैं ज़रूर सुनाऊंगा। काफ़ी लोग हैं जो सही जवाब को दिया है और लोग हैं जो सही जवाब नहीं दिया है। ठीक है दोस्तों, हम आगे चलते हैं। लाइन खुल गया है, मेरा तार का नंबर है 9 6 4 3 8 0 8 3 3 3। आप मुझे ऐप कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं सवाल को दोहरा रहा हूँ, दो हाथ होते हुए थपोड़ी नहीं बचता है, नहीं बजा सकता हूँ, क्या है? ठीक है दोस्तों, आप लोग के लिए चलते हैं। देखा जाए हम तेरे प्यार में सॉन्ग से, हम तेरे प्यार में लता मंगेशकर की आवाज है, शंकर जयकिशन का म्यूजिक है, हर्ष जयपुरी का लाइरिक्स है।

जी हाँ दोस्तों, हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं। सुने थे द क्वीन ऑफ लता मंगेशकर की आवाज़, अभी आप सुने थे। चलो दोस्तों, हम आप लोग के लिए चलते हैं मूवी परख। देखते सस्तक में रिलीज भइल है और इसमें एक लता मंगेशकर ने गीत भी गाया है, बहुत अच्छी गीत है ये। और देखा जाए ये जो लायरिक्स दिखा रहे हैं शैलेंद्रा कहे और लता मंगेशकर ने इसे गाया है, और मूवी परख का है, नहीं कहती सस्तक के गाना है।

जी हाँ दोस्त, अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर। वो कितने कितने भाषा में गाना को गाया, कितने ताल में गाने को गाया है, ये भी हिंदी ताल था और बंगाली थे, जो भी आप सुन रहे थे। दोस्तों, हम आप लोग के लिए चलते कुछ पुराने गाने हैं, लेकिन नए अंदाज में गाया है, नए आवाज़ है। और क्या आवाज़ है, क्या म्यूज़िक है जो बजाया गया है, लेकिन पुराने गाने हैं।

जी हाँ दोस्तों, एफग्रीन रोमांटिक सॉन्ग है और फ्रॉम मूवी चंद्रिका ये गाना है, पुराने गाना है। लता मंगेशकर ने इस गाने को गाया था और कोई है लेकिन यहाँ पे नाम तो नहीं लिखा। ये तो नए गाने हैं और अंदाज में गाया है, न्यू स्टाइल में गाया है, न्यू म्यूजिक है। हम आप लोग को सुनाते हैं, चलते हैं थोड़ा न्यू स्टाइल पे। पुराने गाना है लेकिन न्यू स्टाइल पे हम चलेंगे दोस्तों। चलो आपको सुनाते हैं ये वादिया, ये फिजा, ये न्यू स्टाइल पे गाया है।

जी हाँ दोस्तों, ये वादिया ये फिजाई बुला रही है तुमको। क्या बढ़िया अंदाज में इस गाने को गाया है। अगर आप जा सकते हैं इस गाने को सुनना चाहते हैं तो वे वे वे मंगला .com पे जाइए, हर एक गाने को आप सुन सकते हैं। और मूवी है आज और कल, ये गीत जो भी आप सुन रहे हैं वो फिल्म आज और कल का है। ठीक है दोस्तों, हम चुन पे रख चुका हूँ जगजीत सिंह के। देखा जी आज सिर्फ चुन चुन के गाना मैं आप लोग को सुनाऊंगा, चुनल वाला गाना यार जगजीत सिंह गजल। हम आप लोग के गजल भी सुनाएंगे और हम सब मिल के सुनेंगे। हम है तो आप है तो हम है। और ये मत भूल जाना कि आप सब चुन है द एवरग्रीन लव द लव फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो पे हम सब चुन है दोस्तों।

जहां प्यारे सुनने वाले अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की आवाज, दिन कुछ ऐसा गुजरता है क्या, बहुत अच्छी आवाज से, बहुत अच्छी आवाज है जगजीत सिंह के, दुनिया में नहीं है लेकिन अपना आवाज हम लोग के लिए छोड़ के गया है, जहां भी रहे, जैसे भी रहे, जिस हाल में रहे, बस हम लोग के याद करे। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं पंछी बनू उड़ती एक नया स्टाइल पे है और सुनेंगे, मिल के सुनेंगे और देखा जाए द एफर ग्रीन रोमांटिक सॉन्ग है यार, और सिर्फ मिल सकता है द एफर ग्रीन लव फाउंड रेडियो पे।

0: जा दोस्तों, पंछी बनू उड़ते चलो मस्त गगन में, द एवरग्रीन रोमांटिक सॉन्ग है और हम आप लोग को ले चलते एक एक रोमांटिक सॉन्ग में और ले चलते हैं। देखा जाए बाहर के मौसम, क्या मौसम है, हमारा लव बोट आ चुका है, शांता लव बोट बोट के नाम है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आइए, हम प्रोग्राम करते हैं देनाक शहर से और स्टूडियो भी देनाक शहर में है। आइए, अगर आप ये खाना है तो आइए, आज खाना पक रहा है, अभी हम न जाने कौन ची पक के भी हम जा बाहर लव बोट में ताके कौन ची पक रहा है। सरसहारत हवा चल रहा है, गर्मी मौसम है, ठंडी पानी है, छलांग लगाते हैं, आइए साथ में छलांग को लगाते हैं, देखते हैं गर्मी मौसम है ना और ठंडी ठंडी पानी है जहाँ लव बोट है। अभी खाना पकेगा, अभी हम बताते हैं आज का खाना क्या है। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए हम ले चलते हैं ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, लता मंगेशकर और पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज है। हम सब सुनेंगे, हम सुनाएंगे, हम भी सुनेंगे आपके साथ।
1: जिससे धोखा खाने को दिल करता है, जिसको देख के मेरा यूं ही मर जाने को दिल करता है।

जी हाँ दोस्तों, ये दिल तुम बिन लगता नहीं हम क्या करें। ओरिजिनल सांगर है सांगर ऐसे लता और पद्म श्री मोहम्मद रफ़ी। ठीक है दोस्तों, जैसे आप जानते हैं लाइन खुल चुका है। मैंने सवाल किया था, सही जवाब आ चुका है। अभी जो सही जवाब को देगा अब मुझे ऐप कर सकते हैं। सवाल था, दो हाथ है लेकिन थपोड़ी नहीं बजा सकता हूँ, क्या है? ऐप कीजिए और एक घंटे का प्रोग्राम रहेगा फरमाइश का। अभी हम आप लोग के बताएंगे 11 बजे से 12 बजे तक आप लोग गाने को मांग सकते हैं सही जवाब पे। सही गाने को मांगना, वेर देख लिए, घाम देख लिए और मौसम भी देख लिए कैसा मौसम है, और आपको हक बनते हैं सही जवाब पे सही गाने को मांगने के लिए। तब तक के लिए हम जाते हैं न्यू स्टाइल में।

जी हाँ, नए अंदाज में कहीं दूर जब दिन ढल जाते। अभी आप सुन रहे थे, चलो हम लोग के ये भी सुनाने वाला हूँ, उसके बाद न्यूज़ और रिक्लाम चलेगा दोस्तों।

0: 22 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: जी दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे न्यूज और रिक्लाम। ठीक है दोस्तों, हम आगे चलते हैं और आप लोग के आगे ले चलते हैं। हमने अभी देख के आया है लव बोट में क्या खाना पक रहा है। आज हम लोग के बारबेक्यू हुई, बारबेक्यू हो रहा है, आग बर चुका है, धुआं निकल रहा है, धुआं धुआं सा निकल रहा है और महक रहा है, उस पर रखा चुका है। और अभी हम लोग खाएंगे बिल के और कढ़ाई तो बुरो थे और बारबेक्यू हम लोग खाएंगे आज। ठीक है दोस्तों, हम आप लोग के लिए चलते नए अंदाज आज का प्रोग्राम, कुछ नए अंदाज में, पुराने गाने हैं लेकिन नए अंदाज में, म्यूजिक भी नया है और कलाकार भी नया है। और आप सब चून है देफ अगेन लव द लव फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे चून है। काफ़ी लोग हैं जो प्रोग्राम में सही जवाब को दिया है। अभी हम देखते हैं लोग ज़्यादा है, आधे घंटे भी हम चलाएंगे कुछ नए अंदाज में, एक और आधा घंटा हम चलाएंगे फरमाइश से सवाल और जवाब।

जी हाँ दोस्तों, दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। अभी आप सुन रहे थे क्या नया अंदाज है, नया आवाज भी है। ठीक है दोस्तों, हम आप लोग के लिए चलते हैं जैसे प्रोग्राम है, से प्रोग्राम को बनाकर सजाकर हम आप लोग के कानों तक पहुंचाते हैं। चलो हम देखते हैं एक बार फिर से जगजीत सिंह की आवाज़ में आप लोग की सुनाना चाहता हूँ। सुरदेश फकीर का जो लायरिक्स है, काफ़ी अच्छी लायरिक्स लिखा है, और जगजीत सिंह चित्र सिंह का आवाज़ है। और देखा जाए ये जो म्यूज़िक बजाया गया है, ये जगजीत सिंह खुद इस म्यूज़िक को बजाया है और बहुत अच्छा गज़ल के रूप में गाने को गाया है। लेकिन क्या अच्छा गाना है, हम आप लोग को सुनाते हैं, हम भी सुनेंगे, क्योंकि हमारा फेवरेट गाना जो है जगजीत सिंह का यही गीत है।

कहते हैं मुझसे हर एक चीज को ले लो, हर एक चीज जो मेरा है ले लो, मेरा बचपन वापस कर दो। वो कभी हो नहीं सकता है हमारे दोस्तों। जो भी है जैसे भी है इस प्रोग्राम को सुनते हैं, कहते हैं हमारा सब कुछ ले लो, मेरा बचपन मुझे लौटा दो, वो नहीं हो सकता है। वक्त के साथ हम चलते हैं, वक्त मेरे साथ नहीं चलते, हम वक्त के साथ चलते हैं। वो मुमकिन नहीं है कि हमारा बचपन फिर से आ जाएगी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, हम चलते। अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़, ये कागज़ की कश्ती, ये बारिश का पानी। हम आप लोग के लिए चलते हैं कितनी अकेले, न्यू स्टाइल में और न्यू म्यूजिक।

जी हाँ दोस्तों, कितनी अकेली। अभी आप सुन रहे थे नया आवाज, नए अंदाज, नए म्यूजिक से। ठीक है दोस्तों, घड़ी की तरफ देखा जाए तो 10:40 हो चुका है। हमारा तुम्हारा साथ रहेगी 12 बजे तक। प्रोग्राम को मैंने बनाया है, सजाया। अभी हम प्रोग्राम को चलाते हैं। अभी शुरुआत होगा कुछ दो गाने के बाद। हम आप लोग के ले चलेंगे सवाल और जवाब। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए मैं एक बार फिर से जाते हैं जदी सिंह और चित्रा सिंह की तरफ। मूवी साथ साथ लेकिन का मूवी है, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। जदी सिंह चित्रा सिंह, इसका जो म्यूजिक बजाया गया है वो है कुलदीप सिंह, और देखा जाए लिरिक्स दाफेत अख्तार। चलो मिल के सुनते हैं तुमको देखा तो ये ख्याल आया। ऐसा बात है कैसा बात नहीं,

जी हाँ दोस्तों, तुमको देखा तो ये ख्याल आया मूवी साथ साथ लेकिन दिन ट्वेंट तक तक का, जिसमें दीप्ति नबल और फारूक शेख ने काम किया है। आवाज़ जद्दी सिंह और चित्रा सिंह का भी आप सुन रहे थे। चलो दोस्तों, हम ले चलते हैं आगे, फिर एक नए ढंग में, नई आवाज़ है, नए म्यूजिक है। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए न्यू स्टाइल में।

जी हाँ दोस्तों, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। चलो दोस्तों, हमने चलते हैं यहाँ से, प्रोग्राम शुरुआत होगा सवाल और जवाब। अगले हफ्ते फरीदा को देखा जाए अनोनिम, मखेंता से अनोनिम मुझे दो सही जवाब को दिया था, यास लिखा था, आज भी सही जवाब को दिया है, अनोनिम रहना चाहता है और मांग किया था अनिल अपने को गाना में सुना दे जिंदगी क्या है सुख के, हम ना सुने लिए लेकिन हम जानते हैं भाई अनोनिम प्रोग्राम को सुनते हैं, देखा जाए ऐप पे फिल्म से लिखी से अनिल अपने गाना सुना दे जिंदगी क्या है। ठीक है भाई अनोनिम, हम आपको ये गाना जरूर सुनाएंगे गीत को, और लीजिए आपको गाने को आ रहा है, शुक्रवार को भी सही जवाब दिया था, आज भी सही जवाब दिया, अभी हम एक बार फिर से सवाल करेंगे, उसके बाद उसका हल हम आप लोग के बताएंगे। तब तक के लिए हम चलते हैं, शुक्रवार को जो दो तीन फरमाइश से बचा था हम उसे पूरा करेंगे। चलो भाई अनोनिम आ रहा है मेरी आवाज में है और आप सुनिए।

जहाँ दोस्तों ये जो गीत चला गया है मखेंता से, जो अनोनिम है, एक दोस्त है मेरा, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन वो अनोनिम रहना चाहता है, वो भी ठीक है, जो अनोनिम रहना चाहता है वो भी ठीक है। सही जवाब पे सही गाने को मांग किया था भाई अनोनिम मखेंता से। आप खुश है ना? खुश हुए दोस्त, देखा जाए या मान ग्रेट भाई अनिल ऐप पे लिख ले। और जो सवाल मैंने इस हफ्ते का है वो भी सही जवाब को दिया है और मांग किया है मेरा एक गाना, लेकिन थोड़ा सा वेट कीजिए क्योंकि काफ़ी लोग हैं इस वक्त रेडियो पे जो हमें सुन रहा है और सही जवाब को दिया है। चलो दोस्तों, हम फिर से चलते हैं सुरीनाम। देखा जाए तितली फोक कनाल से रीता गौरी प्रोग्राम को सुनते हैं। और एक गाना मैंने चलाया था भाई सुरेन भगवान दिन के एक रोज, और हब्बे हलिये निकल है गाना, हेमंदा के गाना है, और वो गाना वो बहुत पसंद करते हैं और कहते हैं भाई सुरेन भगवान दिन के गाना मुझे सुना दो। एक अगले हफ्ते जो सही जवाब को दिया है यास लिखा है इसमें, ठीक है। और मैं ये कहता हूँ यास के जो सही जवाब दिया था, हम सही गाने सही मौके पे हम चलाते हैं। चलो हम चलते तितली फूक ना, जहाँ से रीता गौरी प्रोग्राम को सुनते हैं। सही जवाब को दिया, मांग क्या है? जूर सुरेन भगवान दिन का ये नया गाना जो कंपोज किया गया है अजोक अयोध्या, इसका जो म्यूजिक बजाया नाइस उस स्टाइल में। चलो आपका ये जो गाना मांग किया था रीता गौरी, आपके घर तक हम पहुँचाते हैं और मिलके सुनेंगे। अभी लाइनें खुलल है, अंतर दे सकते ऐप द्वारा।

जी हाँ दोस्तों, सुरीन भगवान दीन का ये गीत अब जल्द से जल्द युद्ध पे आया है, आप दे सकते हैं। और मांग किया था तितली फोक नाल से रीता गौरी ने इस गाने को मांग किया था। इसका म्यूजिक जो है सजा करके बजाया है अशोक अयोध्या। ठीक है गीता रीता, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम को सुनते हैं, पसंद भी करते हैं एकदम तितली फोक से। तो प्रोग्राम को सुनने बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे प्रोग्राम को सुनना रहे चाहिए और सदा प्रोग्राम को सुनिए। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं लेवार्ड के तरफ। देखा जाए तार में सही जवाब को दिया है। अब हम ये जो सवाल मैंने किया था कि दो हाथ होते हुए थपोड़ी नहीं बजा पाते हैं, क्या है? अब प्रोग्राम चलेंगे सवाल और जवाब। हम जितने लोग सही जवाब को दिया है हम उनका फरमाइशें पूरा करेंगे, वादा करके हम वादा निभाना जानते।

ठीक है भाई, देखा जाए हमार हमार मामा है का, और मामी भी सही जवाब दे सेगा। इस सवाल का जवाब है हांसकुन। हाथ होते हुए थपोड़ी नहीं बच सकता, दुई हांसकुन से बजाइए तो कुछ ना सुनिए, मां पांच पांच अमरी है पूरा हाथ है। ठीक है दोस्तों, ये था हांसकुन। काफी लोग है जो सही जवाब को दिया है, और हक बनता है जो भी गाना आप मांगेंगे हम उसे आपको सुनाएंगे। देखा जाए मांग किया है, दिल का भंवर करे पुकार। देखा जाए हम तो यहाँ देख पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज है दोस्तों, और म्यूजिक है एस देवर्मन, हसत जयपुरी का हाथ है और कलम सियाही चीज दिखा है। हसत जयपुरी हम लोग मिलकर सुनते हैं भाइयों, शिव गोविंद जो प्रोग्राम में सुने हैं, मामी भी ले वार्ड सर से

दिल का भंवर करे पुकार प्यार का राज सुनो रे पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज था मूवी हम दोनों नहीं खंते एनन सस्त के और चला गया था लेवार्ड की तरफ जहां पे भाइयों सो गोबिन प्रोग्राम को सुनते हैं और सही जवाब को दिया है। शुक्रिया मामू क्या प्रोग्राम को सुनते हैं और पसंद भी करते हैं। चलो दोस्तों सिला मामी भी लेवार्ड से है और सही जवाब को दिया है और मांग किया ओहो बोले शाम सुकून सही है सही जवाब है दो हाथ होते हुए थपोरी नहीं बचता है वो है हंस कुन और मांग क्या है जिंदगी भर नहीं भूलेंगे बरसात की रात पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज है म्यूजिक डायरेक्टर है रोशन लिखा गया है लायरिक शहीर लुफनी और आप जानते हैं कौन कौन इस पे काम किया है। चलो वक्त नहीं है हम गाने को यूज करते हैं सुनाते हैं मामी आपके नाम लेवार्ड से

0: जी हाँ दोस्तों, जिंदगी भर नहीं भूलेंगी बरसात की वो रात। गया था लेवार्ड की तरफ जहाँ पे सही जवाब को दिया था सीला मामी ने। ठीक है, लेवार्ड चला गया है। चलो दोस्तों, हम आप लोग को ले चलते हैं, देखा जाए न्यूज़ और कुछ रे खलामा की तरफ हम ले जाएंगे और देखा जाए आज का प्रोग्राम। आप सब समझ चुके हैं, कुछ बाकी है। 12 बजे तक हमारा तुम्हारा साथ है, उसके बाद हम भी आने और जाने की एक वक्त होती है। काफ़ी लोग हैं और काफ़ी लोग जो प्रोग्राम को सुनते हैं ऐसे सुनते रहे ना, हम यूं गया यूं आया न्यूज़ और बयाम लेकर मिल के सुनते हैं।
1: पुरातन का तौर आनंद राम शुद्ध वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है,
2: ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde, algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht, personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning, jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B, Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Fahon.
5: Digitale radio, fahonfm.nl.
6: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Een 52-jarige man en een 18-jarige vrouw uit de gemeente Den Bosch zijn aangehouden voor bekladdingen en vernielingen in de Brabantse dorp Engelen en Bokhoven. In de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 juli bekladden zij woningen en voertuigen met zeer kwetsende teksten. Al maanden is het onrustig in beide dorpen rondom de beoogde opvang van minderjarige asielzoekers. Politie en mobiele eenheid hebben afgelopen nacht ingegrepen bij de Serventenhal in Surhuis te Veen, waar demonstranten de toegangsweg blokkeerden voor een bus met 28 asielzoekers uit Ter Apel. Betogers gooiden spijkers op straat en schaarden zich tegen beveiliging en hulpverleners. De politie maakte met wapenstokken de weg vrij. De droogte houdt de komende week aan, waardoor het landelijk neerslagtekort volgens Weer Online oploopt van 282 naar ruim 300 mm. De komende dagen blijft het zonnig en droog met tropische temperaturen aan het eind van de week. Augustus verloopt uitzonderlijk droog. In de eerste 10 dagen viel slechts 0,3 mm regen, tegenover normaal bijna 27 mm. Tyfoon Chanhom verstoort het luchtverkeer in Japan. Luchtvaartmaatschappijen ANA en Japan Airlines hebben vandaag vluchten van en naar Honshu geschrapt. NAA annuleerde al vluchten bij Narita Airport en veel bij Haneda Airport. Japan Airlines annuleerde 4 binnenlandse vluchten vanaf Narita. De tyfoon trekt woensdag over Honshu en zwakt daarna af. En dan het weer. Vanmiddag blijft het zonovergoten en droog, ondanks sluierwolken in het noorden. De zwakke noordoostenwind zorgt voor duidelijke temperatuursverschillen in het land van 23 tot wel 29 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
7: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
0: जहाँ दोस्तों, ये था कुछ न्यूज और रे खलाम। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं, सवाल और जवाब प्रोग्राम है, सवाल और जवाब। सही जवाब को आया है लेकिन अनोनिम, एक दनहाक शहर का है लेकिन अनोनिम। ठीक है, अनोनिम भी रह सकता है। सही जवाब को दिया है और सही गाने को मांग किया है। चलो, मांग क्या है, चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर दिल को देखो, कुमार शानू। कुमार शानू इस गाने को गाया है और अनोनिम, जो अनोनिम है सही जवाब को दिया है, लिखा है हंसकुन मूवी सलामी। नेकन दिन वीरन नेकन तक का है और नदीम शर्वन है जो म्यूजिक को बजाया है, जमीर है जो अपना हाथ कलम और स्याही चलाया इस गाने को लिखने के लिए। चलो अनोनिम के लिए हम इस गाने को यूज़ करते ही, देखिए घर तक हम पहुंचाते थे, कानों तक पहुंचाते ही, बस ऐसे प्रोग्राम को सुनते रहिए और पसंद भी करते हैं। भूल मत जाना कि आप सब चुन है द एफ अग्दीन लव द लव फाहन हिंदुस्तानी रेडियो पे चुन है।

जी हाँ दोस्तों, चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो, मूवी सलामी नीलकंठी वीरन नीलकंठ का है और चला गया है दनाक शहर का कोई अनोनिम है जो इस गाने को मांग किया था। ठीक है, हमने उसके कानों तक इस गाने को पहुंचा दिया है और कहा है थैंक्स अनिल, सीखे आप प्रोग्राम को सुनते पसंद करते हैं, ऐसे ही सुनते रहना। चलो हम ले चलते दिनांक शहर में एक बार और फिर से, जहां से अमृत मोहन इस प्रोग्राम को सुनते हैं पसंद करते हैं। सही जवाब को दिया है हंस कुन भाई। अमृत आप प्रोग्राम को सुनते कि हाल चाल है यार, ऐप द्वारा है ब्याल नहीं। ठीक है, हम आपके गाने को आप तक जरूर पहुँचाएंगे क्योंकि आपने मांग किया है। देखा जाए तो थोड़ा सा देख ले, यहाँ पे गाना चल चुका है। भाई अमृत है जना शहर से रहता है और प्रोग्राम को सुनते हैं। भाई अमृत सही जवाब को दिया है, आपके आपका गीत हम घर तक पहुंचाते हैं, आपके कानों तक पहुंचाते हैं।

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे, ये फरमाइश चला गया था अमृत मोहन की तरफ, जो सही जवाब को दिया है। दनाक शहर से प्रोग्राम को सुनते हैं और पसंद भी करते हैं। भाई अमृत, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, इसे प्रोग्राम को सुनते रहना। 12 बजे तक हम आपके साथ रहेंगे, बस फाउन रेडियो को सुनते रहना। और काफ़ी लोग हैं जो इस वक्त प्रोग्राम को सुनते, दूर दूर से प्रोग्राम को सुनते। मुझे डर है कि मैं हर एक की फरमाइश आज नहीं सुना पाऊँगा, तो फिर मंगलवार को हम प्रोग्राम को ले जाते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं। देखा जाए तो रॉय मंगली, जो हमारा खुरुप का एक मेंबर है, वो भी सही जवाब को दिया है। लिखा है अनिल हंसकुन। ठीक है, हंसकुन है, सही जवाब है। सवाल था, दो हाथ होते हुए थपोड़ी नहीं बजा पाते ही। बस हंसकुन है, दुई को प्लास्टिक हंसकुन से बजाइए तो कुछ ना सुनिए। तो वही था हंसकुन। अभी काफ़ी लोग हैं जैसे फरमाइश हम चलाने वाले हैं, और रॉय मंगली जो प्रोग्राम को सुनते हैं, बड़ा भैया है हमारा, और काफ़ी अच्छे गाने को गाते हैं हमारे साथ एल कसौंदा के रहे प्रोग्राम में, और बहुत अच्छा लगते हैं। ठीक है, मांग क्या है, कभी शाम ढले मूवी सूर के गाना है, महालक्ष्मी इस गाने को गाया है रोमांटिक सॉन्ग से। और चलो हम आपके सुनाते हैं भाई रॉय, जहां भी आप है गाने आ रहा है

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, लुकी अली गौरी कृष्णी, और गाने वाला है महालक्ष्मी जो इस गाने को गाया है। फिल्म सूर का है, 2002 में इस फिल्म रिलीज हुआ था, गाना भी ठीक है। दोस्तों ये हमारा भाई जो है रॉय मंगली, ये इस गाने को मांग किया था और बहुत अच्छा गाना मंगले भाई हिला दे इस एकदम से यार, हमार दिल में घुस गई गाना हिल के, जो म्यूजिक बजाया गया है, क्या म्यूजिक बजाया गया है भाई। रॉय मंगली सही जवाब को दिया था और सही गाने को मांग किया था, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे प्रोग्राम को सुनते रहे ना बे कुछ द्विक्वार्ती, हमारा तुम्हारा साथ रहेगा। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं ईडन की तरफ जहां से शकुंतला जी प्रोग्राम को सुनते हैं और सही जवाब को दिया है और मांग किया है, कोई बता दे दिल है जहां, मैं चुप रहूंगी नहीं कंटिन्यू टू इंसेस्ट का मूवी है और मीना कुमारी और सुनील दत्त इसमें काम किया है, पद्मा से मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर इस फिल्म में भी काम किया, अरे फिल्म के गाने भी गाया है, और देखा जाए म्यूजिक जो बजाया गया है वो है चित्रगुप्त इसका म्यूजिक को बजाया है, लाइरिक से अप्रिम सिंह। ठीक है दोस्तों, हम आगे चलते हैं प्रोग्राम का, क्योंकि वक्त ही कम है, सारे कम वक्त नहीं, मेरा हिस्से का प्रोग्राम 12 बजे तक है और द्री क्वार्टर और है। दोस्तों सुकुंतला जी आपका फरमाइश आ रहा है, जो गाने को आपने मांग किया है सही जवाब को दिया, एकदम ईदन से लीजिए।

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सो रहे थे, को ही बता दे दिल है कहाँ, मैं चुप रहूंगी और चला गया है ईदन की तरफ, जहाँ शकुंतला जी प्रोग्राम को सुनते हैं, सदा पसंद भी कहते हैं, भूल मत जाना हम सब चुने द एफग्री लव फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से प्रोग्राम को सुनते हैं, और ऐसे ही पसंद करते रहना, प्रोग्राम को सुनते रहना, काफ़ी अच्छे प्रोग्राम है, सवाल और जवाब, और काफ़ी लोग है जो इस वक्त अच्छी सही जवाब को दिया है, डर है मुझे बस सभी का आज मैं फरमाइशें पूरा नहीं कर पाऊंगा, अगले हफ्ते हम जरूर पूरा करेंगे। ठीक है दोस्तों, हमारे पास एक करोक ग्रुप है, तेईक चैंस करोक फरमासी, जो हर इतवार के हम लोग म्यूजिक करते हैं इलम पास तरात फैम फैफ तक के जनाक शहर में ही स्पेक प्लेन पे, और इधर इस वेलकम, और आज हम अपना पूरा टीम के लिए अपनी तरफ से फाहून की तरफ से एक गाने को सुना रहा हूँ, चलो मिलकर सुनते हैं। हम जानते हैं हमारा पूरा टीम इस वक्त रेडियो पे है, रेडियो सुनता है और पसंद भी करते हैं हमारा टीम, जितने लोग था एतवार के जो हमारे पास थे, काफ़ी दुरुक थे, काफ़ी लोग थे, उन सब के लिए मैं इस गाने को आप तक, आपके लिए मैं चुन करके रखा है।

जी हाँ दोस्तों, हमारे तरफ से हमारा पूरा टीम करो को फरमाती के चैंस के लिए मैंने इस गाने को चलाया है हर एक लेदर के लिए। ठीक है दोस्तों, प्रोग्राम आगे ले जाते हैं। फर्स्ट कौतन से शांता सार जो प्रोग्राम को सुनते हैं, सही जवाब को दिया हैगा, सही जवाब दे सगा और बहुत अच्छा गाना मांगे, बहुत पुराना गाना मांग किया हैगा और पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है और गाने का बोल है, बहुत विशाल गाना है, बहुत विशाल गाना मांगले शांता। फर्स्ट कौतन से प्रोग्राम को सुनते हैं, हमेशा पसंद भी करते हैं, सही जवाब को दिया, सही गाने को मांग किया है, हम आपको सुनाते हैं।

जी हाँ दोस्तों, काली टोपी लाल रुमाल मूवी निकलती देखना फेफ तक का। और देखा जाए फोर्स कोतन से शांता सार्जू जो प्रोग्राम को सुनते हैं और सही जवाब को दिया है और मांग भी क्या था सही सही गाने, रोटिया के गाना है, खाने के गाना है, रोटी के मतलब क्या है, सब चीज़ पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी ने हम लोग को सुना दिया है। जिस रोटी के खाने को कितना इज्जत करना चाहिए हम लोग खुद जानते ही। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शांता, ऐसे प्रोग्राम को सुनते रहना और हम लोग के साथ देना। आप हम चुने फाहौन हिंदुस्तानी रेडियो पे, हम सब उसे लाइक करते हैं, आप लोग सुनते बहुत बहुत बढ़िया बात है। चलो जनाक शहर से रुदी गोली जो प्रोग्राम को सुनते हैं हमेशा और कहते अनिल भाई हम इतना मोल के सुनत प्रोग्राम तो, और बहुत बहुत शुक्रिया यार, और सही जवाब को दिया है कहता ही हंस कुन। और सुनिए कौन गाना मांगे से, बहुत विशाल गाना मांगले बाटे फिल्म दोस्ती का नीलकंठ फिर शस्त्र पद्मश्री मोहम्मद का रफी का आवाज है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक है, मजरूत सुल्तानपुरी की लिखा जो लिखा गया है उसने लिखा है। भाई रुदी आपने सही जवाब को दिया है, प्रोग्राम को सुनते ही काफ़ी अच्छा लगता है कि आप लोग प्रोग्राम पे मेरे साथ, आप है तो हम है और भूल मत जाना हम है तो आप भी है, ऐसे हम चलेंगे अब और फरमाइशें हम सुनाएंगे। चलो दोस्तों जनाक शहर से है भाई रुदी गोली।

जी हाँ दोस्तों, मूवी दोस्ती नेगेटिव फीलिंग्स दस्त कहे, पद्म श्री मोहम्मद रफी का आवाज, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक और हाथ और कलम चलाया गया है मजूत सुल्तान पूरी। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं। भाई गोली इस गाने को मांग किया, गोली भाई, गोली भाई रुदी गोली ना, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम को सुनते हैं, ऐसे ही सुनते रहना और हम आगे जाते हैं प्रोग्राम से। देखा जाए तो भाई मिस्टर अंद्रे जो प्रोग्राम को भी सुनते हैं, टेक द चांस कराओ का फॉर्मेट से का एक बहुत बहुत अच्छा गाना गाते हैं हमारे साथ, बहुत अच्छे गाते हैं, वो भी सही जवाब को दिया है और बहुत पुराना गाना है, नेखन तीन नेखनन फिर तक के दिल लगी, देखा जाए दिल लगी और बहुत अच्छा गाना है यार। चलो हम मिलकर सुनते हैं भाई, क्या गाना मांगा, बहुत पुराना लेकिन क्या गाना है यार। आपके नाम हम करते हैं इस गाने को और ऐसे प्रोग्राम को सुनते रहना।

जी हाँ दोस्तों, देखा जाए दिल लगी नहीं कंती नहीं खन फिरते का जो आवाज आपने सुना था वो सुरैया का है और शकील बदायूनी का जो लायरिक से उसने इस लायरिक को बजाया है और चला गया था मिस्टर अंद्रे भाई अंद्रे जो बहुत अच्छे गाते हैं और देख कितना पुराना गाना मांग किया था नहीं कंतीन नहीं खन फिरते में भी हम लोग के पैदाइश नारा भाई और क्या गाना बहुत मोई गाना मांग लिया जे जे सुनू से हम जरूर पसंद करे हुए इस गाने को और आपके नाम था भाई शुक्रिया प्रोग्राम को सुनते हैं ऐसे ही हमेशा हमारा साथ देना हम जानते हैं आप सब है तो हम लोग है और हम सब चून है फाहौन हिंदुस्तानी रेडियो पे। चलो दोस्तों हम चलते हैं ब्रीता की तरफ जहां से बिश्ना और सोनू प्रोग्राम को सुनते हैं सही जवाब को दिया है और मांग किया है मूवी उपकार का एक गाना है जो उसने मांग किया है सही जवाब को दिया है सही गाने को मांग किया है और देखा जाए सिंगर है मन्ना दे उपकार निकंती सैफन से अस्तक का है लायरिक से गुलसार बद बवार और लाई देखा जाए कल्याण जी आनंद जी इसका म्यूजिक सजा के बजाया है चलो देखते हैं मनोज कुमार और परान इसमें काम किया है चलो ब्रेदा की तरफ जा रहा है जहां बिश्ना और सोनू प्रोग्राम को सुनते हैं

जी दोस्तों, ये कश्मीर वादे प्यार वफा का मनोज कुमार इसमें काम किया, मूवी उपकार मना दे का आवाज थे। चलो दोस्तों, ये बरेला की तरफ चला गया था जहाँ से बिश्नोई सोनू इस प्रोग्राम को सुनते सही जवाब को दिया है। और ऐसे प्रोग्राम को सुनते रहना, यही मैं कहूँगा। हर एक जो प्रोग्राम को सुना है मेरा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि दो आखिरी गाने हम चलाएंगे, उसके बाद न्यूज़ 12:00 थोड़ा से पास हो जाए, प्रॉब्लम नहीं है। एक आखिरी गाना हम चलाएंगे जो यहाँ वातरगंज फैल से संतरा जी प्रोग्राम को सुनते हैं और पसंद भी करते हैं और सही जवाब को दिया है। देखा जाए, संतरा जी एक गाने को मांग किया है और क्या अच्छा गाना को मांग किया है। और देखा जाए तब तेरी तेरी कारण मेरी सजन फिल्म आन मिलो सजना, ठीक है। लता मंगेशकर लाइरिक्स म्यूजिक है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल आनंद बख्शी का ये लाइरिक्स है और रेस का नासा पर एक इसमें काम किया है। चलो संतरा बातरिंग से प्रोग्राम को सुनते हैं, दनाक शहर से आपके नाम।

जी हाँ दोस्तों, ये फरमाइश चला गया था संदरा जो वातगंज फैल से प्रोग्राम को सुनते थे नाक शहर से, और सही जवाब को दिया, सही गाने को मंगा है। बहुत बहुत धन्यवाद शानदरा, आप प्रोग्राम को सुनते हैं दोस्तों। ठीक है, आज के प्रोग्राम यहाँ तक ख़त्म हुआ। एक आखिरी गाना हम आप लोग के सुनाएंगे, सुनते रहना काफ़ी इंटरेस्ट बाई गनवा में, क्योंकि एक छोटा सा बिटिया है, छोटा सा बच्ची है, शालिनी दिव्या गोपी, जो उसका अपने बाप की याद में इस गाने को गाया है। विनोद लक्ष्मण अब इस दुनिया में नहीं है, काफ़ी वो गुजर गया है, और उसका बेटी जो है अभी तक अपने बाप को याद में बहुत रोते है। छोटा बच्ची है, छोटा सा बिटिया है, और शालिनी दिव्या गोपी है जो अपने बाप के याद में एक गाने को गाया है और यूट्यूब पे आ गया है। हम लोग मिल के उसे गाना भी सुनेंगे, बहुत सिलह गाना है अपने बाप का जो आस है। क्लिप में देखिए तब सब चीज़ देखिए, वो एख्त है, और आज तक भी अपने पिता को बहुत बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और रोज रोते हैं बेचारी बच्ची। इसका म्यूज़िक जो है कंपोज किया है वो अशोक अयोध्या है, उसका स्टूडियो में गाना लेवा है, और अशोक ने इसका जो जिसका जो क्लिप है उसने उसी ने बनाया है, और बहुत हार्ट लगते मुझे वो बच्ची को, इसलिए मैं आप लोग के बताता हूँ। इस क्लिप को देखिए और लाइक कीजिए, और देखिए इसमें कितना दर्द है। हम तो देखा थे तो रोवे लग लिया, देखा देखा तो अब आपके आस तो रोई करें सो। तरी से टाइम ज़्यादा होएगी न्यूज़ के, अब अगर ई गाना के बाद हम न्यूज़ देंगे, उसके बाद हम आपसे जरूर विदाई लेंगे। चलो हम सुनते हैं अकेले ही चले आओ, शालिनी दिव्या गोपी जो अपने प्यारे प्यारे बाप के विनोद लक्ष्मण के याद में इस गाने को गाया है। छोटा बच्ची, उसके गाने के ध्यान मत दीजिए, क्लिप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे वो छोटा सा बच्ची क्या चाहता है।

जहाँ दोस्तों अभी गाना मैं आगे सुनाऊंगा, इसलिए मैं इसे पॉज कर दिया है। काफ़ी हमें तो दिक्कत रोए लग जाए भी, और मैंने कुछ गलत कह दिया था। अरुण गोपी इसका बाप है, जो अभी म्यूजिक के वेदर्स में था, गाना गावा था, और अब वो गुजर चुका है, बेहाल ये गुजर गया। अरुण गोपी सभी कोई जानते हो, उसे काफ़ी नाम कमाया है गाना में, और उसका कुंची बोली उसका बेटी ने उसके याद में इस गाने को गाया है। हम यहाँ से आगे ले जाते हैं पौसा कर दे रही कि जमे तनी से हम लोग के और मोए लगे। और ध्यान दीजिए, जाइए यूट्यूब पे देखिए और इस क्लिप को देखिए, तो और कुछ हम लोग समझेंगे।

0: जी हाँ दोस्तों, एक 8 साल का बच्ची है। इसका बाप था अरुण गोपी, जो इस दुनिया में नहीं है। अपने बाप का याद में ये गाने को शलीना देविया गोपी ने इस गाने को गाया है और अशोक अयोध्या इसका म्यूजिक को सजाया है, बनाया है। जाइए एक बार यूट्यूब पे देखिए और कुछ मजा है। तब तक के लिए दोस्त हम चलते हैं न्यूज और रिकलामा की तरफ, उसके बाद हम आपसे जरूर विदाई लेंगे।
1: म्यूजिक एंड इंफॉर्मेशन bij Fahon Hindustani Radio.
2: Dit is het Fahon Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Een 52-jarige man en een 18-jarige vrouw uit de gemeente Den Bosch zijn aangehouden voor bekladdingen en vernielingen in de Brabantse dorp Engelen en Bokhoven. In de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 juli bekladden zij woningen en voertuigen met zeer kwetsende teksten. Al maanden is het onrustig in beide dorpen rondom de beoogde opvang van minderjarige asielzoekers. Politie en mobiele eenheid hebben afgelopen nacht ingegrepen bij de Serventenhal in Surhuisterveen, waar demonstranten de toegangsweg blokkeerden voor een bus met 28 asielzoekers uit Ter Apel. Betogers gooiden spijkers op straat en schaarden zich tegen beveiliging en hulpverleners. De politie maakte met wapenstokken de weg vrij. De droogte houdt de komende week aan, waardoor het landelijk neerslagtekort volgens Weer Online oploopt van 282 naar ruim 300 mm. De komende dagen blijft het zonnig en droog met tropische temperaturen aan het eind van de week. Augustus verloopt uitzonderlijk droog. In de eerste 10 dagen viel slechts 0,3 mm regen, tegenover normaal bijna 27 mm. Tyfoon Chanhom verstoort het luchtverkeer in Japan. Luchtvaartmaatschappijen ANA en Japan Airlines hebben vandaag vluchten van en naar Honshu geschrapt. NAA annuleerde al vluchten bij Narita Airport en veel bij Haneda Airport. Japan Airlines annuleerde 4 binnenlandse vluchten vanaf Narita. De tyfoon trekt woensdag over Honshu en zwakt daarna af. En dan het weer. Vanmiddag blijft het zon overgoten en droog, ondanks sluierwolken in het noorden. De zwakke noordoostenwind zorgt voor duidelijke temperatuurverschillen in het land van 23 tot wel 29 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
3: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07-36522747। मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
0: Ja, dus je taal. न्यूज और रिक्लामा जो अभी आप सुन रहे थे दोस्तों, ठीक है। जितने लोग का फरमाइश मैं आज नहीं चला पाया हूँ, मुझे माफ़ कर देना। फ्रेडा के हम हर एक के फरमाइश पूरा करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ काफ़ी फरमाइशें हैं, काफ़ी सही जवाब है जो मैंने फरमाइश नहीं चला पाया या आपको नहीं सुना पाया, माफ़ चाहता हूँ। फ्रेडा के हम हर एक की फरमाइश हम चलाएंगे। यहाँ से हम आप लोग से विदाई लेते हैं। आने और जाने के भी वक्त होता है, मुझे भी वक्त चाहिए जाने के लिए। तब तक के लिए मुझे ज़रूर जाने की इजाज़त दे दिए। यहाँ तक था हमारा प्रोग्राम। मैं हूँ अनिल सरजू आपकी खिदमत में और फ़ोन FM पे आप सब चुने। बाय बाय, स्वाई स्वाई, राम राम, अस्सलाम वालेकुम। हम फिर मिलेंगे।

0: भी बस कहते हो छोटे भैया?
1: ये तुझे कहाँ से मिली?
0: आज मैंने तुम्हें माफ कर दिया। रक्षाबंधन के दिन भाई बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। मैंने आज तुम्हारी रक्षा की, ये कभी न भूलना।

0: से गिर गया या जानबूझ के गिरा दिया? झूठ क्यों बोलती हो भाभी?
1: मीना, भाभी को झूठा कह रही हो? बेशरम, शेखर।
2: मेरे पास वक्त नहीं है बातों के लिए, मैं जा रहा हूँ।
0: नहीं भैया, ये तो बहन की प्रार्थना है। बहन हो और भाई राखी न बंधवाए तो बड़ा अपशगुन होता है भैया।
2: होता है तो होने दो।

कुछ रिमिक्स सॉन्ग हम आप लोग को आज सुनाएंगे हमारे यारो। सात समुंदर की बातचीत है ना, वाह वाह, हमें भी पीछे आना है।

Hello, Only Bay Radio Fun, Only Bay Radio Fun, Johnny's ne, और आज remix hot song आपके हम सुनाए हम चलते हैं बादशाह बादशाह

चिनीच कला न जाने जांच सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी हाजिर बांधे तमाम रेडियो फोन के सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार प्यार भरी अदाम सत श्री अकाल। जोनी नंबर वन है हमारा नाम। आज के देश विदेश के समाचार को सुनाना है हमारा काम, यही है हमारा मोहब्बत भरी प्यार की पैगाम। दोस्तों आज है मंगलवार, मंगलवार 11 तारीख अगस्त हो चुका है। एल फोकस घड़ी की ओर देखा जाए तो त्वेई मनीतन वोर शेष हो चुका है और यहां से हम अपना देश विदेश के समाचार आपको सुनाएंगे।

आप लोग को हम यहाँ से और वहाँ लेकर चलेंगे, ना घूमने के लिए, समाचार सुनाने के लिए। और आज भी आप लोग को हम ले चलेंगे सूरीनाम से लेकर और देश की ओर। और हम चलते हैं सबसे पहले अपना सूरीनाम के समाचार की ओर, उसके बाद हम ले चलेंगे और नोख अंदर लंदमेन से। अब देखो भैया, सूरीनाम में आप लोग जानो बड़ी गर्मी है, वहाँ पर इन हॉलैंड देश में भी गर्मी है यारो। सूरीनाम देश में तो और ज़्यादा गर्मी है, लोग जा रहे हैं यहाँ वहाँ घूमने को, रेक्रियासी ओर के ओर भी लोग जाते हैं, यानी कि ठंडा खोज रहे हैं, पानी खोज रहे हैं, घूमने को खोज रहे हैं। तो ऐसे बातचीत हो रहा एक रेक्रियासी ओर थे भैया, वहाँ पर एक देर तक यार के और घूमने को गया है, तो वहाँ बताए गए सूरीनाम देश में, तो वहां पर जो गया है घूमने को अपने दोस्तों के साथ, वहां से ये औरत जो है देर तक यार के बोले हम अंगेला घरे जाए। हाँ, तो घरे जाने पर भैया और ना गैल है अपन जेकर संगे गैल है ओकर संगे ना गैल है कि हम ओकर संगे लौट के आई, और ओकर बोले है जो ओकर फ्रिंदे ने जो रहा जेकर से हंसे काप रहा बोले ये औरत चला गया। तो बताई गई है सामन मेट फ्रिंदेन एंड फ्रिंद फॉन द फ्रिंदेन एगो रेक्रियासी ओर्थ बेगल वॉज फॉर फर्तीर ओपर खाइफस मोमेंट बोले हैगा मोमेंट फॉर ट्रोखस हसेल्स का सुंदर हार दारफान ऑफ द हुक्त स्टेलन बोले जे कसंगे गए लहा बिना बतावे उसे भी चल गए से बेल द फॉर फॉल्क मेरदर केरे में थार फ्रिंदेन मार सुंदर हर खवेंस द रिजल्टात। तो अप फ्रिंदेन की बेल करे है और उस सब ना उठावे तरवा एगो फ्रिंदेन के संगे गए लहा उप फ्रिंद के संगे भी गए लहा ओम दैट स्लाख्त ओफर बोले है इमांगत्रा घरे जाए। तब बोले उतरे में बोले कि एगो आदमी एक लिफ्ट आनबीत करी से टाइनस द रेड सौ द सिचुएशन एक्ट सेन का एक्सकलीर्ड एके बोले तो के उतार दे तोर फ्रिंदेन तो के छोड़ के चल गए हम तो के उतार देवे। और बोले हैगा फॉल्क स्लाख्त ओफर स्लाख्त ओफर दर तक यार के बोले हैगा दूर द बस्तूर दर बोले जे कसेंगे एक मिला और रहा बेहार खस्तलाख्स देल बतास्त बोले हुआ छुए लगल तू से इसे एक दार इन तीख फरसेत सौ से स्टीफक बेरे कील सेन फास्ट कहूदन। और दूसर कोई लिफ के संगे जात रहा दुई मर्दाना ओ तो मेरा एक लिफ्ट दे से। तब बोले एक के छुई मुई कर एक शुरू करी से ये बोले हमें ना कर तो उकर गटाई समंदराई करी से भैया दबाई से। और बोले तेज से रेट वेस्ट है स्लाख तो फर कॉन्टैक्ट लेखन में तो बकेंदे दी बे दे सूरीनाम से पुलिस सी वेर एक्साम इस। और बोले लिफ्ट तो हम बोले बेल करी से गा एक मिला के जे किसी पहाई से मुई कॉन्टैक्ट रहा। और बोले सही स्टूडेंट ब्रेक वारीन zij de situatie kenbaar maakte. Of bolle de informatie werd daardoor doorgegeven. Zij bahike. Ego politieteam bolle ik je achtervolg krise. Of bolle hega betreft de voertuig. Ego Kennedy weg mee. Tot stilstand te brengen. De twee inzittenden werden aangehouden. Of Sandrijke politiebureau mee liggen. Betaaien ego Toyota Runix raha. Is in beslag genomen. Voor verder onderzoek. Na afstemming met de Surinaamse. OM wordt de twee natuurlijk, hoe ze hebben gesipahie pakken gelegen. Maar ja, dat je kooi kesangen je hier ghoemen. तो उसे मुझसे अस्प्राक करके जइयो, नहीं ना जइयो सो उमर इधर उधर घूमे भाई। अब देर तो फ्रिंदेन और ओ कफरीन तो के छोड़ के चल गए, अब तू बचले अकेल, अब वो दोनों कहाँ गए ले भाई कोई पता ना है, अब तो के फरफूर ना है लौट के आवे के दन क्रैती दे छोड़ देंगे चिस मिन से। अब देखिए क्लॉक आमगबाउ तोत ऑटोमेटिक फीरवापन सूरीनाम के बात है, रोड ब्लॉक तो जाने डाम पे सब सिपाही लोन गाड़ी रुकाई कंट्रोल करे हैं। तो दुई को आदमी के सबन पकड़ी से भैया, तो बोले हैगा रेख्यू बेस्तान बोले हैगा दुई आदमी के पकड़ी से पुलिसी अक्सी पे। तो बोले बताए गए है इन एल फन साकन
सिपहिया बोले क्लॉक भैया उकाली का ऊंची है क्लॉक दी फोल्कस एट ऑनसुक सुदान पास आन का पास कि क्लॉक जो रहा भैया वापन ऑटोमेटिक से फिर वापन से बनो के बनाई ला एमा एगो से फिर तक यार के आदमी के पकड़ी से तेज इज अ मिनी रोड ब्लॉक ऑफ द वेगनार वीटा ग्रोन में बोले वीटा ग्रोन में से बन हुआ एगो मिनी ऑक्सिकल ले रहा जो तिबीति सुला जा है और बोले हैगा है रीत अंत्युता प्रादो ओतुआ रहा तीता प्रादो रहा और बोले जात रहा बोले बेरे कंट्रोल फुरते बोले जेमा ड्रग्स मिलल है भैया फरमूडल का हाच मिलल है और बोले एमा एगो स्कौदर तास मिलल है जहाँ पे एगो फेफ में सेफ स्कैरपा पत्रूनन मिलल है छगो मिलीखरा मिलीमीटर के लायो ही मिलल भाई अभी साख के अंडरसुक बेले बोले 20 स्कर्प 9 मिलीमीटर पत्रूनन आंगत्रोफन और बोले है कारोलिना क्रीक कंती इके जात रहा इस अब ओवर का वापन द बदरेकिंग ऑफ द रिक्रियासी और कारोलिना क्रीक में अनमान सौदार मेंदर पर्सोनन में तो फिर वापन हेवन बदरेक एंड फॉर फॉल्कन से वेक खरीदन और जब बदरेक कर लेते तो कितने सब दौराई के पकड़ी भैया एक बारे में क्योंता हाइलुक्स रा क्लेम एंड हिल्ट हम आन बोले हैगा द हाइलुक्स वेट अन क्लॉक पिस्तौल गवंदन फॉर दैट फ्यूरवापन ब्लीक वेल अन गेल्लिगे फ्यूरवापन मागतिगिंग ते सेन अफगेवन मार देस ओंदास वेट हेट वापन इन बेस्लाग फान ओंडरसुक गनोमन ook deze verdachten zijn in verzekering gesteld. Ja, oké, vergunning rajonta. Jabberjes agile gel he tulun jano he. Or nami bope hua pe saban doti jarawe he. Fel jarawe he. Or itra barka agile gel bhaiya ki 10 ghanta saban u agia hua pe. Butai se wand dhua tu jane bara dur dur chal ja he. Fel store place or nami bome. ब्रांतेर हुआ घंटन बेचक रहा भैया 10 तारीख को क्रिस्टस के बाद है और बोले हैगा मैं मन एंड मकसबन अग्या ऑन द कंट्रोलर रखी से 1 बजे वारन द हेल्प दिन से खसाम लखनऊ बीच मेरे ब्लूस वर्कशॉप हीदन में से और बतावे द विंड दार में एंड हेयर ऑन स्टेकिंग सोरखन बहुत आगे रहा हिया बुतावे तो हुआ आगे लग जाए और हिया लगावे बुतावे तो अंते आगे लग जाता रहा हमारा जनता ये सब बात है सूरीनाम के और नामी भू में के बात है हमारी जनता एक 18 बरिस के लौंडा भैया 18 बरिस के लौंडा 8 तारीख के ऑक्सिस के मेरे खनुमो करना बा देखी भाई रमिया के देखी रहा वो किसी पाही पकड़ी से 14 बरिस के लड़की के बोले हैगा 14 बरिस के लड़की के बारे में मिंदर यार लड़की से ओके सेक्सुअल मिसब्रेक करे रहा और बताए गए है द फरदख्त से फरक्लार द सिपाही में बोली से कि रात के दिसेल्फ द रात के वोनिंग फन हर ओम दी नास हर वोंड हाथ बखीफन अब सुख नार अपलादर फॉर हर मोबाइल टेलीफोन Echter trof zij hem niet thuis aan en werd zij te woord gestaan door diens jongere broer die in de omgeving bekend staat als Anna Dicky. बोले गए ऑपरेटर खोजे टेलीफोन के रात के और बताए गए है गान एगो बपाल मोमेंट बोले है गान देखी से कमाड़ी खुलल है फन वार्निंग ऑफ स्लॉट वार्ना है हार नान स्लाब कामर त्रोक ओके घीच लेके कमरा में छौड़िया के 14 बरिस के ओन द हेर हाल द फरसुकन ओम हार में त्रुष्ट लात हीर द फरदख्त हार अंदर द्वंग सेक्सुअल मिसब्रेक ना द दात हील्ड है हार फोर ओम में निमन ओवर फोरफाल त प्रातन वारना से द वोनिंग फरलीत और बोले द स्लाख्तोफर बगाफ सिक डायरेक्ट नार अ नीव aan wie zij vertelde wat haar was overkomen. De neef stelde vervolgens zijn moeder hiervan. Ormai jijke aangifte krisen van het meisje telefonisch op de hoogte bracht. Obole sipahi attarwes kolondake. Ab sipahi li jijke oke pakarke ban krisen. Voor seksuele misbruik van de 14-jarige meisje Hamari Jinta. एक आदमी भैया एक आदमी भाग गया रहा जहल से
ये बात हो रहा है येगा ओकर नाम बा भैया इवान पामीना भग्य रहा और ये भग्य रहा जहलम से एक सिपीर ले गया रहा काम करवावे भैया सिपीर ले गया रहा है कि काम करवावे खरो तो कॉम्बे वैक में स्कून मार के काम करवावे तो जाने जहलियन के सबन ले जा है काम उम करवावे तो ये काम करते में पालमंत्या इनके बिच्चे में और ये पेल भागल्ला भैया अलगो बड़े खरोत अलार्म भइल है सिपाही नोन सब कोई दौरल यरमिया के खोजे के और बोले फरदाख्त दी सेल्फ दे मेरा के सब हम पकड़ी से को एड्रेस पे जेकर नाम बा सालियो वेख पे लातूर में और बोले द फरदाख्त प्रोबेद से एक सेन आनहोडिंग ते ऑनट्रेकन मार वेर द कोर्डर ऑप्ट्रीनन ऑपन्यू आनहोडन भागे मंगा ट्रफिन से एक के पकड़ ली से भैया ये बहुत दिन की जहल पाए रहा ओमदत ई रूफ कलरा भैया मेट खवेल तो अब तो निकल के एक घंटा के तो भगले बाटे मैं 2 घंटा बाद तो किसी पाही फिर पकड़ ली तो कौन फायदा है तो के भगे के भैया वहाँ तू तो डायरेक्ट पकड़ाई गए हम जाए भैया सूरीनाम की ओर जहाँ चिकुनगुनिया के बारे में यहाँ पर चर्चा है चिकुनी दुनिया सूरीनाम में बहुत ढेरा भैया बड़ी लोग के होल अंदर जो फकानसी से गए रहा सबके काटे रहा चिकुनगुनिया अब यहाँ बतावे चिकुनगुनिया लिख लांगर बोले रूप ऑफ अलर्ट बलाइफन भाई चिकनगुनिया के बारे में सूरीनाम के बेयोखी बोले है एपिडेमिस्ट से फांसे फां चिकनगुनिया है अंतल बस में तीन जो तो गए ले लबारातोरियम में हुआ बफेस्टक करी से अस खफालन दियो बासेस फां सिम्टून से फास्टगेस्टेल इस डेडलक afgenomen. De ziekte circuleert nog wel in het land, maar bolle komt die bijle. Bolle dat zegt de Stefanie, tjuk alam. Bolle de afname bekend volgens de biologie. Niet dat de preventiesmaatregelen kunnen worden losgelaten, maar bolle chintana kario, maar bolle haitje joakke bare mee. Bolle jahan pani hai, wahan chikungunia hai, maskita hai bhaiya Suriname des mee. Bolle sabke spuiti kare khasant hai sorg ke. Bolle jahan pani hai rukal hai, bolle hua anda dewe, huwe se uka larf se. Aur bolle huwe hai overleven en later opnieuw voor een toename. Ego moskita populatie है बेयोखी फ्राग एक्स्ट्रा आंदाग फुर प्लांटन बाकन वासन दीरन एन वातर बाकन एन वातर ओप्सला और बोले वहां पर चिकुनगुनिया है हमारे जनता तो आपको हम बता देते हैं चिकुनगुनिया बोले कमती है मां बोले है अबे भाई ओकर बारे में जनता लोग के चाहिए हुआ अलर्ट रहे की आप लोग जानो हैं सीरिया के बांटी हम जाए तरी सीरिया में वहाँ पे भैया देखता तो रहा बासार अल आजाद इंसान तैसलान सीरिया में चौबीस तक में वो पेल भागल देशवा छोड़ के रिसलांत में हमारी जनता और रिसलांत में सीरिया के देखता तो आजाद हुआ पे लुकान है हाँ वह दूसर कोई सीरियल ले ली से ऊपर फैमिली आजान बोले दसन बरिस से सीरिया कंट्रोल करत रहा तो उन्होंने कर बारे में जानो है हमारे जनता तो बताए गए हैं अन सीरिया के बारे में दमास्कस में और बोले 2024 में भाग के गले रिसलांत में लुकान है और यहाँ बताए गए हैं ओके सीरिया में सबन तैर दौत फर और दिल करी से ऊंचा है सीरिया में रुसलान में लुकान है मां सीरी से देखते आजाद वे फर्स्टेक तेर दूत फॉर और डील है ओके सबन सीरिया में फॉर और डील करी से अन दो स्ट्राफ के हमारी जनता और हम जाई है और आगे भैया बुधवार के भैया वुजदाख के 12 तारीख के बोलेगो मुजदा के हेता प्लान है 4 प्रोविंसी नीदरलैंड में 4 प्रोविंसी में हेता प्लान है जैसे लिम्बर्ग भाई नोर ब्राबान भाई सेल्डरलैंड भाई ना ओफर एसल में बोले बहुत जबर गरम है एरिफीएम बोले है फन क्राफ्ट है डोंडरडा फॉल्क्स द प्रोविंसी
और बताए गए है दोस्तों 24 ग्राड तो 21 ग्राड है। तो हम बोली बताए नहीं भैया आप लोग जान रहे ये गर्मी के मौसम है, यहाँ नीदरलैंड के बातचीत हो रहा है। हमारे दोस्तों बेल्ख के ओर जाल भैया वहाँ बारबेक्यू हुए बेल्खिया में, बोले बेल्खिया में भैया वो कैंपिंग है, और बोले बारबेक्यू में बोले फरखिफ्तक भैल है दोर बारबेक्यू इंसेंट टेन सिर्फ नंदर तक यार है एगो बेल्ख के आदमी सनिचर के इस ओंखकोमन इंसेंट टेन ऑफ एट फेस्टिवल कैंपिंग इन बेल्खिसे होक स्ट्रातन में, और बताई गई है सनिचर के भविष्य लोग सब ओके पाई से कैंपिंग है अंतलियां से फेस्टन हुआ भी रहा फोकस ओम स्टैंडर्ड हद मान द बारबेक्यू इन सेंट टेन अनकस्टोकन टेकन द कौ द हेल्प दिस वर्डन डायरेक्ट इन कस्काकल और सो मार्केट से मन ओके लेगे कोल स्टोव मोनोक्सीड वर्गीकरण के बारे में दोस वेंटिलेटर ना करन हुई भैया तो खोले रहा गरम खोए खातिन तो ये चीज भइल है यानी कि बेल्खी में दोर बारबेक्यू एक गीत की ओर हम चला जाए।

और दोस्तों हम अपना समाचार को लेकर आगे को बढ़ते हैं कि हमसे शर्म और क्या पर्दा। दोस्तों हम चलते हैं सेंट्रल बैंक के ओर सूरीनाम के। तो दो हफ्ता हो गया आप लोग जाने को, इकोनोम है सूरीनाम में जिसका नाम बा जिम बोसाइट। जिम बोसाइट भैया इबीसी में अक्टूबर प्रोग्राम वगैरह हूँ आप बोले लगल है खसप्रेक करे से ओफर कसर शेरफ फन सूरीनाम ओके बोले कॉमर्शियल बैंकर बेरे सेंट्रल बैंक फन सूरीनाम बोले है एगो पेस ब्रेक में बोले फॉर्मल का गवर्नर सेंट्रल बैंक फन सूरीनाम बोले है रॉबर्ट फन ट्रिक बोले यूरिडिस वर्ड बैकस्टान दो एडवोकेट इवान कन्हाई और बोले है कन्हाई तो जाने हैं बहुतस के भी रहा और अभी ट्रिक के भी है। ट्रिक जो हम लोग के सेंट्रल बैंक के एस गवर्नर रहा बन है कई बार इससे हम लोग के बैंक रोफ करी से भैया एकर बारे में और बोले हैगा इन द प्रेस ब्रेक में बोली सेगा फुरमालक गवर्नर रॉबर्ट ट्रिक के बारे में जेकर अर्फकार है इवन कन्हाई बोले है बोली से कन्हाई इस ए नीट एज में ऑफ फटिंग फन बोसाई जब सेंट्रल बैंक सुंदर तुस्तेंगे फन कमर्शियल बैंकन खबर की बाग फन द बे हर अनहोदन कस रिजर्व्स बोले कन्हई एंस ना है सेंट्रल बैंक बोले एनलक एरकेन करी से कि बोले जितना तखुदा रहा बैंकों में वारन आन खवेन एंड हीव में द बत्रोकन बैंकन रीगलिंग खत्रोफन फॉर द तुरक बतालिंग सिंसदिन सैन द तखुदन फन कमर्शियल बैंकन बे द सेंट्रल बैंक अनसीले फरमिंदर कन्हई बस्ट्राइड द क्रिटिक die hierover de econoom en politici is geuit en stel dat Centrale Bank wel dergelijk bevoegd was om de kasreserves te gebruiken. Dus doe zeer kooi banklun, hoe het herre raad, de IRMIA gebruiken leraar, en boel hebben gekocht in sub Centrale Banken, commerciële banken, ke, sub ke terugbreken. Toen ik er maar niet mee econoom was hij, और बोली से एने और कन्हई भैया चटकल है चन्हई बोले इसे बतिया ना हैगा बोले बंकुआ के रेख्त रहा पैसों जो लेनी करे पाए रहा कमर्शियल बंकों से ओके खबर करे के अब बोले धीरे धीरे बोले कि सब क्यों चाहिए भरे के। तो हमारी जनता अब देखो हम जाइए बैतलांत की ओर थाईलैंड स्कॉट न्यू वापन फॉर क्यूनियन ऑफ ओम स्कूल स्कूटर्स। हाँ स्कूल में तक बोल भाई भैया पर देखो ताई से प्रीमियर ही हैगा वो बोले हैगा नवा वापन फॉर क्यूनिंग इन इट लॉन्ग ना देगा ना द दे टू लगे को स्किट स्किट इंसिडेंट भाई लगे स्कूल में जहां आठ मिला मर गए है को 14 बरिस के लुंडा और जाए के दागी सेगा अनलातरू अपर के सेल्फ मोड प्ले कर दी सेगा बोले आठ मेंशन को आमन ओम हेड लीव अनदर 14 यार रखे जो दागेर अपरेक सेल्फ मोड कर दी से थाईलैंड ना स्कॉटिंग में ना 10 मिलियन बिरखर से मेट अन फिर वापन हुआ पे अदमी लोग का फिर वापन है 10 मिलियन अदमी के दैट कम देर ऑफ ऑन कफेर 15 वापन पर 100 मेंशन बोले द मिनिस्टर अंडरवेज हैव न्यू फेलिंग्स वेलिंग्स ऑफ स्कूल। और थाईलैंड में भैया सब कोई वैकेंसी हुआ जा है जिस वहाँ पे 15 आदमी 100 आदमी के पास में वापन हैगा जिसके फर्क्यूनिंग है मैं से तो ई फर्क्यूनिंग के बारे में अभी आगे हैगा बन करे लिबानोन के जाए भैया जहाँ पे हिजबुल्ला हुआ पे रिगेरी करे है बैरूत में और इसराइल जाए जाए सब दागे है बैरूत बोले हैगा लिबानी से पार्लियामेंट हुआ पे भी बा चाहे लिबा के लिबालोन के हुआ है बाकी हुआ के बास जो नहींगा हिजबुल्ला है भैया द टेरर ग्रुप वो एक मारे दागे हैगा इसराइल का बोले हिजबुल्ला के लिबालोन में तो बोले हैगा अब एगो वेथ है हुआ पे अने लिबालोन में बोले अन वेथ हुआ बा आंखों वार में द दूसरा वेर अफ़ख़स्काफ़ है इस इस्तलांत इमें द उस्तन दैट डिड इन अ वेथ फॉर अंकर उधर मुझे द उस्तन में दूसरा फरा भैया मैं बोले हैगा लिबालोन दूसरा फोन निकारे है 2005 फिर में दो स्ट्राफ वहां पे आल नीट में तू खपास इन इट लैंड मार द स्ट्राफ वाज ऑन वेल द स्ट्राफ वेर फरफंगन दो लीफस लंगा गफार लीफस लंगा स्ट्राफ हम लोग के सूरीनाम में भी दो स्ट्राफ है भैया बाकी कोई ना हम देर करे है यूसीसी बोले है आदिल नसर वर्थ लिबालोन बोले है बोले रिक्यू असर खात उम्र बस्कैन में फन मेंशन रेक्टन दो दो स्ट्राफ आफ्टर स्काफन लिबालोन बोले हैगा कि अफ्सकाफ करेगा यानी कि दो स्ट्राफ मेंशन
और आगे खूम अपन समाचार लेके जाए भैया। यहाँ पे बताए गए हैं ब्रांस्ट ऑफ तेल के बारे में भैया, तेल के बारे में बोली ला ब्रांस्ट ऑफ फ्राइसन ब्लाइफन फुरूपक उन खवैसे सिरना में तेलवा भी चढ़े भैया। यहाँ बलावे हैगा बोले रखेरिंग बोले बस लो तक करीसेगा दिफेर से मास काप लग खुरुपेरिंग बोले है देव ने तीव वसले इत वर खोनो में कि बोले ओवर हेट आल दैट नीड लॉस लात फन अ हेड का प्राइस काप बोले तेलवा जितना रहा उतरे चाहेंगे बोले न चाहे चढ़ावे के बोले फिनाशियल दर्फिंग 305 तक मिलियन SAD per maand. Bolle hega volgens de berekening van het ministerie Financiën zal dit bedrag opgelopen worden tot 3 miljard als de huidige regeling wordt voorgezet. Bolle otraatje hard jij, want er is Suriname subsidie. Directeur Financiën ke bolle hega oliemaatschappijen inmiddels op de hoogte zijn gesteld van dit besluit. तो सूरीनाम के तेल के बारे में हमारे जत्ता फुटसल पकेट के ओर हम जाए भैया, सौदा पानी के ओर के भी बारे में जाएला ड्रिंक वाटर लीफ खमीज कब शर्मा करी फिर में तू जाने है जो हुआ पे मछरिया न चरिया से फटके तक भैले हुआ पे जाए के पकेट शर्मा का कंती और बेनलाद में बटा है पानी बटा है हमारे जनता। इससे बातचीत है सूरीनाम देश में तेल के बारे में आप लोग को हम बता देते हैं कैसे बात है दोबारा तय के बारे में बहुत बड़का में लिखी से हमारी जनता अक्तुएल प्रोग्रामा भी है और अक्तुएल प्रोग्रामा के बारे में आप लोग को हम जरूर बताएंगे कि रेम ट्वी होंड ट्वी डाइसन ट्वी होंड फेफ्ट स्लाख ऑफर्स बा 57 फरकेस दूध 2026 में भैया उतरा आदमी मर गए 57 आदमी सिरनाम में मर गए खाली अरेडिंग से और जो चोटान हैगा तो 2259 परसोनन फरकेस ओंखलिक से तुनो तो बड़ा जोर हुआ सब चलावे भैया ओमा बतावे 57 गो आदमी मरल है और 18 गो ब्रोफिस्टर मरल है 9 गो ओवर बस्टूडर्स मरल है ऑटो बस्टूडर्स 7 गो फुरखांगर जो चलत रहा और 6 गो जो बैठल रहा और बोले 5 गो जो बेस में बैठल रहा और बोले 3 गो मोटर फिच वाला मरल है और जो आतिफे जन मोटर वन जो चफीर विलियल ओ मके मरल है 2 गो बैसिग्री वाल मरल हैगा 2 गो ई बाइक के मरल है और 1 गो पिकअप बस्टूडर और 1 गो 2 मिला मरल हैगा जो 2 मिला चलावत रहा भाई संगे तो इतना आदमी मरल है सूरीनाम में और अब हम लोग क्रिस्टस में भाई और हम बताए गाड़ी गाड़ी ब्रोफीस बेसिकली बचाई के चलियो सूरीनाम देश के बातचीत हम करेला हमारे प्यारे प्यारे जनता। तो ये बातचीत है हमारे जनता यहां बताए गए है सूरीनाम देश में एक आदमी भाई एक आदमी अपन स्वांगर औरत के और अपन लड़कन के मैसांदल करी से सोचो भैया कितना गिरल नीच इंसान तो बाटे। बताई गई है देर तक या रखे गो आदमी सिपाही पकड़ी से संदराई के सिपाही पकड़ी से भाई और बतावे गए मैसांदल करला जेकर औरत पेट से रहा भैया पेट से स्वांगर औरत की तुमरियो जेके लड़कन रहा लड़कों के मैसांदल कैसे गो 11 बरस के बेटुआ के बोले त्वी ताल से इनको वेरक होकर घटाई दबाए रहा दोनों के बेटुआ के मायो के और बोले हैगा सो इन अ बात कामर हेवन प्लाट्स का फोन ट्रेवल है ट्वी इंसिडेंट ऑफ एट एयर सो कबीर बोले है बात कामर में और बोले प्रासी में करी से तुन द फ्रॉ ट्यूशन बेद वेल द कोमन बोले है हर हेवन खवेख दियूत वार दोर से इतर फल कोम द फ्रॉ इस 4 मांदन स्वांगर द फर्दाख्त इस आंखाउदन और ओके सिपाही पकड़ के बन करी स्वांगर औरत के मरियो तो सिपाही का तो के बोसी नहीं भैया ओके चाहत रहा इंडिया में रह के तो जाने हुआ बारा जो लाठी बरसे भैया लाठी बहुत जोर बरसे हुआ खराब ना करियो इंडिया में हुआ पे भैया बांस के टिक्के ले के हम तो देखेला जाने सूरीनाम इंडिया में कैसे मारे भैया हुआ पे का बोले है ग्रुप निकल हैगा और का बोले है मोती के इतरा इतरा गाड़ी स्कूल के लड़कन दे से गा बोले का बोले है अने अने
kakkerlakke een groep waar hebben jenter manter groep gedemonstreerd kan leren. Oor hoe apen si pijnloer pakker pakker koop maaren, bhaiya bara maar maaren hoe apen. To baat aise ham teri jai bhaiya ministerie, mo minister Gopal ke oor. Ha van omrat to jane bigi mama na, bigi mama bole hai ga sport ke minister jon hai Patrick omran bole NDPR hai, bole utar kabhi nu uthave ga yuik saakar lalini Gopal ke, die volk sa nooit te bereiken is. Ghetto leider hai ga, bole Gopal.

और प्रेम की नैया है और राम के भरोसे। दोस्तों कुछ रीमेक सॉन्ग आप लोग को हम आज सुनाएंगे और प्रेम की नैया के बाद हम क्या लेकर आएंगे, बस सुनते रहो। फुल हॉट वन, फुल हॉट वन।

और मुन्ना मुन्ना मुन्ना मुन्ना गोरा रंगड़ी की और दीवाना हो गया हमारी दोस्तों। और हम चलते हैं रिमेक सॉन्ग और रिमेक सॉन्ग की ओर हम चलते हैं फुल डांस एंड हॉट वन।

फुल रेमिक सॉन्ग आज हम लोग को आपको हम सुनाएंगे, एक और हो जाए।

0: मिक्स बाय डीजे तोनमोय।
1: एंड दोस्तों आज हम रिवेक्स के मोड में हैं और जरेगेस के मोड में हैं, तो आपको हम सिर्फ रिमेक्स ही रिमेक्स आपको सुनाएंगे हमारे यारो। उसके बाद में हम चलते हैं एक और जोन की ओर, आओ सुना जाए ये क्या है।

और तुवनारी और कौन है खिलाड़ी, ये कौन सा जोंग है, रेमिक्स सॉन्ग है जो रेडियो फोन के माध्यम से आप लोग को हमारे झुमाते हैं, नचाते हैं, आओ सुना जाए।

बेस्टसेलर स्टार आज हम रिमिक्स के मोड में हैं। और जब रिमिक्स के मोड में हैं तो आपको आज छुमाएंगे, नचाएंगे, सजाएंगे, जानी है हमारा नाम।

और छोड़ दिए हमने सारी दुनिया तेरे लिए है, और उसके बाद हम चलते हैं और आगे को अपना फुल रिमिक्स सॉन्ग लेकर हमारे दोस्तों। तो हम चलते हैं, आज रिमिक्स के मूड में हम हैं और रिमिक्स के मूड में हैं, तो हम क्या लेकर आते हैं, आओ सुना जाए।

और विजाओं ही विजाओं, और देखा जाए तो आज हम आप लोग को कुछ रिमिक्स सॉन्ग सुनाएंगे, और कुछ शायरी आज नहीं होगा लेकिन सिर्फ सिर्फ रिमिक्स हॉटवॉन। नाचने के मूड में हो तो आप नाच सकते हैं, झूम सकते हैं हमारे यारों।

0: DJ Saran.in.
1: हम किसी दूसरे की अमानत है।
2: तुम सिर्फ मेरी हो। और किसी की नहीं हो सकती। हम दोनों के बीच अगर कोई आया तो समझो वो मर गया।
3: हाँ, और समझो हम दोनों के प्यार के बीच में कोई आया तो वो समझो कि वो मर गया है।

और जीना दुश्वार हो गया है, तो आज रिमिक्स के मूड में है मेरे दोस्तों। आप लोग जानते हैं आज हम रिमिक्स के मूड में हैं, तो हम फिर एक रिमिक्स सॉन्ग के ओर हम जाते, तो हम चलते हैं एक सॉन्ग के ओर।

और हमारी यारो लगा चुनरी में, और चुनरी में दाग कब लगते हैं आपको तो पता होना चाहिए, और दिल ही तो है। राज कपूर मनादी, और इसमें मनादी का फिल्म का नाम है दिल है तो है। निखत द्रिय शस्त्र का ये फिल्म है। तो दोस्तों हम और आगे को चलते हैं, और मनादी के बांध पे हम चलते हैं किशोर दादा के ओर, और कहते हैं ना पूछ दिल के हकीकत मगर ये कहता है, ना पूछ दिल के हकीकत मगर ये कहता है, वो भी बेकरार रहे जिसने बेकरार किया है। तो हम चलते हैं, मूवी का नाम है अंदाज, 1971 का ये फिल्म है, जिसमें माला सिन्हा राजेश खन्ना ने काम किया है, और किशोर दादा का ये सॉन्ग है।

और जिंदगी एक सफर है, और जिंदगी एक सफर क्यों होता है दोस्तों, जब सुहाना होता है। मूवी का नाम है अंदाज 1971 का ये, और ये फिल्म है। तो हम और आगे को चलते हैं हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों। तो और क्या है, जैसे कहा है किशोर के बाद में हम चलते हैं और परमाश्री मनाडे के ओर की कहते हैं, इस दिल की दास्तां भी बड़ी अजीब होती है, इस दिल के दास्तां भी बड़ी अजीब होती है, बड़ी मुश्किल से इसे खुश नसीब होती है, किसी के पास आने पर खुशी हो न हो, पर दूर जाने पर बड़ी तकलीफ होती है। तो हम जाते हैं कि अगर हमारे गीतों में हमारे टूटिया हो तो हमें क्षमा करना दोस्तों, लेकिन हम जाते हैं प्यार करने वाले को लिए कि जोहरा क्या कहते हैं।

0: खान साहब या तुम भी तकल्लुफ करने लगे, बड़े अफसोस की बात।
1: खाना वाना तो होता ही रहेगा, महफिल कब गर्म होगा?
2: महफिल भी जमेगी, तसल्ली रखो।
0: दादाजी आज तो आपको गाना सुनाना पड़ेगा।
2: यार अब बुढ़े हो गए, गाना वाना पुरानी बात।
1: तुम बुढ़ा हो गया, हम तो नहीं हुआ। सुनाओ, बात करो। ओ भाभी जान।
3: जी भैया।
1: हो तुम्हारा शोहर बुढ़ा हो गया था, हम इसको जवान करता है।
2: अच्छा, लक्ष्मी सामने है तो मैं जवानों का जवान।
0: लो सुनो,

और मेरी जोहरा जबी फिल्म वक्त का ये गीत है। तो कहते हैं अब जिसके ये मैं आई वो ही पाई रोशनी, अब जिसके ये मैं आई वो ही पाई रोशनी, हमने तो दिल जला कर सारे आम रख दिया है। तो हम चलते हैं रात कली में क्या आते हैं दोस्तों, जो सपने आते हैं तो क्या आते हैं, रात कली में किशोर दादा ने आते हैं।

रात कली और ख्वाब आई, उसके बाद हम चलते हैं मनदई की ओर।

और मुस्लिम को तस्लीम अर्ज है, और हमारे हिंदू को प्रणाम। दोस्तों कितनी खुशी से हमारी और यानी परमा श्री मन्ना देवी ने और इस गीत को आपको सुनाए हैं यारो। उसके बाद हम चलते हैं किशोर दादा की ओर। अब जिसके ये मैं आई वही पाई रोशनी, अब जिसके लिए मैं आई वही पाई रोशनी, हमने तो दिल जला कर ए आम रख दिया है। तो किशोर जी क्या कहते हैं?

बड़ी मुश्किल सी ये दिल मेरा दिल नी ठड़प की। और किशोर दाना ने इस गीत को सुनाए हैं तो कहते हैं बड़ी मुश्किल से इसी खुशी नसीब होती है, बड़ी मुश्किल से इसे खुशी नसीब होती है। किसी के पास आने पर खुशी हो न हो, पर दूर जाने पर बड़ी तकलीफ होती है। तो हम चलते हैं अगला जोंग की ओर। हमारी दोस्तों लता जी, नैतिकी लता जी और परमाश श्री दादा हेमंत दादा मन्ना दे का ये जोंग आपको सुनना चाहिए।

और दोस्तों आपको पता चले और मनाडे के बाद हम चलते हैं अपना प्रोग्राम को लेकर आगे। कहते हैं अब जिसके ये मैं आई वही पाई रोशनी, जिसके लिए मैं आई वही पाई रोशनी, हमने तो दिल जला कर सारे आम रख दिया है। तो हम चलते हैं किशोर दादा के ओर, एक प्यार भरी सॉन्ग आपको हम यहाँ से सुनाते हैं।

और दोस्तों इसके बाद हम जाते हैं अपना प्रोग्राम को लेकर आगे, और यहाँ पे मनाली क्या कहते हैं।

तुमने अपनी आवाज वाली को पाल, तुम्हारी खोई हुई स्वर्ग में वापस मिली। हाय आज देवी माँ से कुछ और भी मांग लेती। गाओ गोपाल गाओ, इस नौ जीवन की

कुर्सी रिलान जाना है, गाड़ी हीर करना है तो आपको जाना पड़ेगा मखेंता वेग 259 बाय ऑटो फरहुर बेड्रेव Amalia. Zeer zuinige auto's zoals Toyota Premio, Toyota Raktis, Toyota Fits. Contact in Suriname de heer Parkas Gokul op telefoonnummer 00597 87 57 939. Contact in Nederland 06 57 418873. Autoverhuurbedrijf A.

0: 22 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: और आप लोग को ओल्ड एंड गोल्ड के रिमिक्स सॉन्ग हम यहाँ से सुनाएंगे। हमें आशा उम्मीद है कि आप लोग को हमारा ये प्रोग्राम जरूर अच्छा लगेगा।

0: कैसा है, कैसा है ये दीवाना दोस्तों रिमिक सॉन्ग आज हम आप लोग को सुनाते हैं। और हम आगे के बढ़ते हैं। जब ये लड़का दीवाना होता है तो पर्दा में क्या होता है और पर्दे के पीछे क्या होता है दोस्तों, आओ चला जाए इस सॉन्ग को हम सब प्यार से रेडियो के माध्यम से सुना जाए। ओनली रीमिक्स। और ये है परमाश्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ सॉन्ग है आशा भोसले के साथ में।
1: पर्दा हटा दो जरा मुखड़ा।

0: पर्दा हटा दो।
1: और दोस्तों आज हम आप लोग को एक और सुनाते हैं और बॉलीवुड ओल्ड एंड गोल्ड रीमेक सॉन्ग हम आपको फिर सुनाते हैं।

दोस्तों लाइफ में प्रोग्राम लाइस्ट्रे ओनली झूमो नाचो गुनगुनाओ रिमिक्स ओल्ड इन गोल्ड। जितने लोग को ओरिजिनल पसंद है वो भी हम जरूर चलाते हैं, लेकिन कितने लोग के रिमिक्स सॉन्ग भी और यानी के पसंद है। तो आज आप लोग को हम ओल्ड इन गोल्ड रिमिक्स सॉन्ग सुनाएंगे। तो रिमिक्स सॉन्ग के मूड में है तो अब क्या है सुना जाए, किशोर जी आपको क्या सुनाते हैं। किशोर कुमार निखंती तख्त का हिंदी सॉन्ग रीमिक्स हम आप लोग को सुनाएंगे। किशोर कुमार का आशा भोसले का ये सॉन्ग है।

आई और आ भी आ जाना। और फूल की शहर में एक घर अपना है दोस्तों, उसके बाद हम भिन चलते ही आओ सुना जाए क्या लेकर हम आपके लिए आए हैं हमारे लवर्स के लिए।

और क्या हुआ तेरा वादा भी लेकर हम आप लोग को आएंगे, लेकिन क्या हुआ वादा से पहले जॉनी आपको और कुछ सुनाना चाहते हैं, और आपको हमें यही आशा उम्मीद है एक बैंड खून जेकर मैन से दर्जली ओग जो फिल खनी थे वाते वात ऑफ दैट मोमेंट, जैसे हम यहाँ पे कूद कूद के और नाच नाच के खनीट करी लमें से एन येली उगदार है एन आल से दैट इज नाउ खनीट एर वन

और ओ जब हम भी जवां होगे तुम भी जवां होगे तो पता नहीं चलेगा कि आप आमस्टरडम में होगा या सूरीनाम में होगा। जब बचपन के प्यार जगते हैं और दोनों सोचते हैं जब हम दोनों जवां होगे तब मालूम नहीं कि हम कहां होगे, कोई रोटरडम में होगे, कोई आमस्टरडम में, लेकिन कोई भी सूरीनाम भी हो सकता है दोस्तों। और हमारा एंड कहाँ होगा दोस्तों इसको भी किसी को पता नहीं है, लेकिन अच्छा अच्छा सॉन्ग से हम आप लोग को आज सेवा फिर से करते हैं।

क्या क्या आज हम आप लोग को सुनाएंगे दोस्तों। अब झूमो नाचो गाओ गुनगुनाओ जो भी चाहे और करो। देसली चिस्का ये अलेन बे रेडियो फाहुन और बे अलेन बे रेडियो फाहुन खनीते बेस्ट लाइफ स्टार्स। इसके बाद और आगे हम चलते हैं।

शांति। तो दोस्तों हमारे उम्र के लोगों और दिल ना लगाना हमारे यारो, प्यार करना जरूर करना। तो हम चलते हैं एक आउट जोन की ओर, वो क्या है

0: और मुझे भी चलते जाना है। और दोस्तों नौका लास्ट नंबर
1: कबूतर
0: और कबूतर जा के मतलब ना है कि हम चला जाएगा। अभी इसके बाद इस सॉन्ग के बाद में हम रेक्लाम चलाएंगे और रेक्लाम के बाद में दखंद लाइन उपमेन से दमोख यली खान बेले ऑफ रेडियो फोन ऑफ टेलीफोन नंबर 073-622-0777 मोगे यली खान बेले ओम नंबर अन द व्राग मा दन डू यली पास ना द रेक्लाम। पहले इस गाना को इस गीत को हम सुना जाए।

पहुंच हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो पाहुन के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9735 तक 20 तक 7 फेटा। फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो।

0: जाने को है घर।
1: और दोस्तों जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, और आज फिर हम आ गए हैं कुछ पुराने गीतों की संगम बहार लेके। तो फरमाश्री मोहम्मद रफी का गाना है, रफी के गाने आपको हम आज कुछ सुनाएंगे। और ढल चुकी शाम, एक गम मुस्कुराने के

पुराने कुछ नए गीतों से आज हम आप लोग को सेवा करेंगे। हमारे यारो, हमारे दोस्तों, हम चलते हैं अगला गीत की ओर। हम हमसे मोहब्बत करके कुमार शानू साधना सरगम का ये गीत है।

और दोस्तों हम उनसे मोहब्बत करके और मोहब्बत करके अगर मोहब्बत हो जाते हैं तो क्या होते हैं हमारे यारो, क्या होता है उसके बाद हम और एक गीत की ओर बढ़ते हैं, वो है तेरी याद दिल से और भुला ना पाए। फिल्म का नाम है हरियाली और रास्ता 1966 का, जिसमें मनोज कुमार, माला सिन्हा, हेलेन ने काम किए हैं।

और तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ, जब किसी से नफरत हो जाते है, झगड़ा हो जाते है, तो लोग उसके याद भुलाना चाहते है। उसके बाद हम चलते हैं अगला गीत क्यों रे और होगा, मत कर इतना गुरूर, जो कभी कभी लोग कितनी गुरूर करते हैं। हमारे दोस्तों अलका याग्निक पंकज उदास की ओर हम चलते हैं, और आओ मिल्क सुना जाए, मूवी का नाम है आदमी।

जरूर दोस्तों, मत कर इतना गुरूर। फिल्म के नाम है झनकार अलका यांगनी, पंकज उदास का गाया हुआ सॉन्ग है। इस फिल्म में रीना रॉय और गोविंदा ने काम किए हैं हमारे यारों। उसके बाद हम अगला गीत की ओर बढ़ते हैं, कुछ नए और कुछ पुराने गीतों के बहान प्रोग्राम हमारे चलेंगे। तस्वीर तेरी दिल में, तस्वीर कब लोग दिल में उतारते हैं, ये किसी से बेहद बहुत बेहद दिल से और उससे प्यार करते हैं। नैतिक गिल्ला था जी, परमाश श्री मोहम्मद रफी का सुपर हिट सॉन्ग देवानंद मालधान सिन्हा का ये सॉन्ग है, आप सुनते रहो।

और तस्वीर तो तेरी दिल में आती ही रहेंगे। आओ नैतिक लता जी परमाश श्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ सुपर हिट सॉन्ग है दोस्तों, तो प्यार भरी गीतों की बहान प्रोग्राम हमारा।

की रूठ आई। और उसके बाद हम चलते हैं अगला गीत की ओर। और अगला गीत क्या है हमारे यारों, आज हम कुछ लवली सॉन्ग के मूड में हैं। और लवली सॉन्ग कब होता है, जब प्यार बढ़ जाता है। तो हम चलते अनुराधा पौडवाल उदित नारायण की ओर। अब भी या महिया, अब देखो भैया क्या है।

और आपकी आ जाने से कभी कभी बहार हो जाता है और बहार के बाद में कभी कभी मार भी हो जाता है। ये तो प्यार में चलते हैं हमारे यारो, हमारे सुनने वालों, उसके बाद तो हम चलते हैं और हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते हैं, और हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते हैं। आओ मिलकर सुना जाए।

आहूठ हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ये कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतो निकलिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 7 2 तक सेफ नफेटा फाहून हिंदुस्तानी रा

तो आज हम आप लोग को दो टॉप सिंगर्स का प्रोग्राम हम सुनाएंगे और वो है यानी कि द टॉप सिंगर्स फ्रॉम इंडिया द टाइगर ऑफ द इंडिया कुमार शानू का गीत और एक बगल है अलका याग्निक का गीत। कुमार शानू के साथ अलका याग्निक के गीत हम चलाएंगे और फिर से उसके बाद हम चलाएंगे और वो है मोहम्मद अजीज का लवली हिट सॉन्ग हम आप लोग को सुनाएंगे। तो पहले हम चलते हैं मोहम्मद अजीज का ये सॉन्ग।

और दोस्तों, जैसे हमने आपको कहा है कि आज हम आप कुछ सॉन्ग सुनाएंगे, मोहम्मद अजीज का सॉन्ग और एक बगल उसके बाद, और वो है टाइगर ऑफ इंडिया कुमार शानू और अलका यांगनिक का सॉन्ग हम आपको सुनाएंगे।

और कोई तरह से है जिंदगी तो कोई साथी चाहिए। अब हम चलते हैं कुमार शानू के बांट में एक बार फिर मोहम्मद अजीज की ओर।

तो मोहम्मद अजीज ने कहा कि ये गम ना होता तो वो शराब कभी नहीं पीता। तो उसके बाद हम चलते हैं टाइगर ऑफ इंडिया कुमार शानू एंड अलका याग्निक।

और दोस्तों अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज का ये जोंग थे। उसके बाद हम चलते हैं एक बार और आलका यागनी कुमार शानू के ओर और हमारे यारो तो हम चलते हैं एवरग्रीन कुमार शानू एंड आलका यागनी।

और बरसात में भी आग लग जाती है दोस्तों, तो ये सब तो प्यार की बातें होती है यार। तख्त में जो सदाबहार सॉन्ग है और वो है कुमार शानू अलका यांगनी का एक गीत, आपको हम सुनाते हैं। और दिलबर के बाद में हम क्या आते हैं,

अभी आप सुन रहे थे ओपनिंग सिलेक्शन मेरे हिस्से के प्रोग्राम में, और प्रोग्राम को हम आगे में बढ़ाते हैं मुकेश जी की आवाज़ में। ये सुंदर भजन आप सुनेंगे।

अभी आप सुन रहे थे मुकेश जी की आवाज में प्रभु का नाम जपो मन मेरे। लता और मुकेश जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी एक बेचारा से आप सुनेंगे हो नैना तेरे नैना।

लता और मुकेश जी आपको सुनाने वाले थे। फिल्म का नाम है एक बेचारा, इसी फिल्म से हमने आप सभी को सुनाए हैं। तू मुझको और मैं तुझको समझाऊं क्या, तू मुझको और मैं तुझको समझाऊं क्या, दिल दीवाना तेरा भी है मेरा भी, गम का खजाना तेरा भी है मेरा भी, नैन का चैन चुरा कर ले गई।

नैन का चैन चुरा कर ले गए। अभी आप सुन रहे थे मुकेश जी की आवाज़ में, फिल्म का नाम है चंद्रमुखी। कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है, वो जो अपना था वही और किसी का क्यों है। यही दुनिया है तो फिर ऐसी ये दुनिया क्यों है, यही होता है तो आखिर ये यही होता क्यों है।

दो कदम तुम भी चलो, दो कदम हम भी चले। अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी एक हसीना दो दीवाने। लता जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी कहीं और चल। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं रे आने वाले आ, बस तू देर ना लगा।

अरे आने वाले आ, तू देर ना लगा, हर आहत पे हो ढक से दीवाना दिल मेरा। लता जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी कहीं और चल। जिस तरह आग को आग कह देने से मुंह नहीं जलता, बिल्कुल उसी तरह अच्छे को बुरा कह देने से बुरा नहीं हो जाता, लिहाजा अच्छा गुमान रखें।

सोच रही कि कहूँ ना कहूँ, पर आज कहूँगी। मेरे सनम तूने ले तो लिया दिल, याद रहे मेरा जीना है मुश्किल तेरे बिना। अभी आप सुन रहे थे, ज़रा सी जिंदगी है अरमान बहुत है, हमदर्द नहीं कोई इंसान बहुत है। दिल का दर्द सुनाए तो सुनाए किसको, जो दिल के करीब है वो अनजान बहुत है।

कैसे करूं प्रेम की मैं बात, ना बाबा ना बाबा पिछवाड़े बुढ़ा खास्ता। सबक जिंदगी ने सिखाया है मुझे, हर अपने ने रुलाया है मुझे, कोई अपना अपना नहीं होता, ये भी एक अपने ने ही सिखाया है मुझे।

तेरी आँखों में देखूं तो तेरी तौहीन ना हो जाए, तेरी आँखों में देखूं तो तेरी तौहीन ना हो जाए, तुझे मेरी मोहब्बत पर यकीन ना हो जाए।

प्यार के उजाले में गम का अंधेरा क्यों है, जिसको हम चाहे वही रुलाता क्यों है। मेरे रब्बा अगर वो मेरा नसीब नहीं तो ऐसे लोगों से हमें मिलाता क्यों है।

0: जिंदगी सुंदर है पर जीना नहीं आता, हर चीज़ में नशा है पर पीना नहीं आता, सब मेरे बगैर जी सकते हैं बस मुझे ही किसी के बिना जीना नहीं आता।
1: Life,

0: पेक्स थ्रू क्लाइन हैंडल डिंकल नंबर 56 देन हाथ में सभी त्रोपी समान रोजाना आपको यहाँ पर ताजा दी जा रही है। भाता भिंडी तरोई अमसोई सुप्रोपो तैरबला कौश बांध अनेक तरह की ड्रिंक्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। फर्नांडिस के साथ में मसाला ब्लिक्स वारन कसरीपो चावल और दाल अवल और बेहतर पता है जहाँ पर रोजाना तमाम ताजा सामान आपको मिलते हैं निहायत सस्ते भाव पर। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए तार का नंबर आप नोट कीजिए 9 7 3 7 7 7 7 2 6 पर आप बातचीत करें। नूपा इम्पैक्स रोटर क्लाइन हैंडल डिंकल नंबर 56 देन हाग में।
1: Nupa Impex, Surinaamse markt in Den Haag. U kunt bij ons terecht voor Fayapatu producten, Soto Mix, kant-en-klare chutney, bonensoorten, ketchup marinades, nasi kruiden, pomtaier en nog veel meer. Kijk op onze website surinaamsetoko.nl. Surinaamse markt in Den Haag.
2: रमीज ट्रेवल सर्विस फॉर ऑल योर बुकिंग्स। सालों से सर्विस और गारंटी के साथ आपकी सेवा करते हैं। हर एक बुकिंग के लिए रमीज ट्रेवल सर्विस लिट इयाता टिकट क्लार टर्वाइल यू वक्त। ऑनलाइन बुकिंग के लिए www.ramiztravel.nl। इंडिया टूर्स के लिए भी हमारे पास आइए। रमेश मोनी ट्रांसफर 10 मिनट के अंदर आपके पैसे दुनिया में कहीं पर भी आपके परिवार तक पहुँचा देते हैं। De Heemstraat 166, Hobbemaplein, Den Haag ke Bazaar ke nazdeek mein. Ramesh Travel, Ramesh Shipping and Ramesh Money Transfer. Isi daftar mein laaye gaye hain. Post NL ke kantoor. Voor overschrijving van uw autokentekens kunt u hier terecht. Ramesh Shipping voor al uw pakketten. Aapke pakket aapke ghar par aakar le lete hain. Pakketten voor district Komabaina, Saramaka, Koruni en Nikeri worden via Surpost lokaal uitgereikt.
3: Let op.
2: Eenboedel verhuizingen, auto's, zwaar materieel, je hiense bhejwaaiye. Pakketten worden in containers verscheept, dus inbraak en diefstal is uitgesloten. De Suriname specialist. Ook pakketten naar Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Saba. Ramesh Travel, de beste service. De Heemstraat 66, telefoon voor afspraken en informatie. 070-389-6047. Jato 070-380-4284. Check ook op onze website ramishtravel.nl.
4: Muziek en informatie. Bij Fahong Hindustani Radio.

फन होम के हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ये कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। ले तो निकलिए तार कीजिए 9 7 3 5 7 6 20 तक सेफ नफेटा फाहून हिंदुस्तानी।

0: van Hindustani Radio.
1: एक बात बोलूं, मैं जिससे बात करता हूं उसे उदास कर देता हूं, कभी कभी तो अपनों को निराश कर देता हूं, बहुत चोट खाई है दिल पर तभी खामोश रहता हूं, वरना मैं भी चुप नहीं रहता, बातें पे हिसाब करता हूं।

लोग कहते हैं कि क्या लेके आए थे और क्या लेके जाओगे, हम कहते हैं एक दिल लेकर आए थे और हजारों दिलों में जगह बना कर जाएंगे।

ओ जाना, अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी तेरे नाम। कितनी दूर निकल गए हम रिश्तों को निभाते निभाते, खुद को खो दिया अपनों को पाते पाते। लोग कहते हैं कि हम मुस्कुराते बहुत हैं और हम थक गए दर्द छुपाते छुपाते।

लगा लगा लगा रे लगा प्रेम रोग अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों फ्रॉम द मूवी पार्टनर से ये सॉन्ग हो जाए।

दुपट्टा तेरा नव रंग दा अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी पार्टनर से हमने पेश किए हैं तेरा रंग बल्ले बल्ले।

मेरा रंग बल्ले बल्ले भी आप सुन रहे थे सुनने वालों, और अब चलिए सुनते हैं मिलकर अलका याग्निक और सोनू निगम जी की आवाज़ में छमियाँ।

शो मिंदर धूम का भी आप सुन रहे थे सुनने वालों, फ्रॉम द मूवी शहजादा से ये सॉन्ग हो जाए।

0: सुनने वालों, यहाँ तक आपने सुने हमारे हिस्से का प्रोग्राम जो समाप्त होने पर आया।
1: कहाँ जाऊंगा,
0: जिस तरह से हमने अपने हिस्से के प्रोग्राम पेश किए हैं, हमें आशा है कि प्रोग्राम आप लोगों को जरूर पसंद आए हुए होंगे।
1: कहाँ जाऊं,
0: अगर जिंदगी बाकी रहा तो आने वाले रविवार को हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, हमारी प्यार भरी राम राम नमस्कार, खुदा हाफिज।
1: कहाँ जाऊंगा,
0: हैव अ ब्लेस्ड डे एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। टिल नेक्स्ट

मर के भी हजारों को याद आएंगे, मर के भी हजारों को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। सुनने वालों के सेवा में विजयंती का प्यार भरा नमस्कार। आपका जन्मदिन है, आपके घर पर एक नए मेहमान आए हैं, यानी एक बेटा या तो एक बेटी ने जन्म लिया है, या तो कोई जश्न आपके घर पर है, तो आप सभी को बधाइयां पेश कर रहे हैं। जो बीमार है या लाचार है, तो भगवान से तंदुरुस्ती के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। जिसके घर पर विपद पड़ी है, भगवान उन्हें सहन शक्ति प्रदान करे। जो हमारे देश में मेहमान बनकर आए हैं, हम आपको हरी राय से स्वागत करते हैं, और जो विदेश जाने वाले हैं, हम आप सभी को एक शुभ यात्रा पेश कर रहे हैं। जहाँ पर भी आप हैं, जिस हाल में भी आप हैं, आप सभी को भी हम याद करते हैं, और जो लोग इंटरनेट द्वारा हमारे प्रोग्राम को विदेश में सुन रहे हैं, आप सभी को भी हम याद करते हैं। सुनने वालों, अब से लेकर दिन में 12 बजे तक मैं आप सभी की सेवा करने वाली हूँ, इसी आशा के साथ कि जिस तरह से मैं अपने हिस्से के प्रोग्राम पेश करूँगी, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी।

अभी आप सुन रहे थे पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुम मेरी आवाज़ लो मैं आ गया, आप बुलाए और मैं ना आऊं ये तो हो ही नहीं सकता। सुनने वालों, एक बहुत सुंदर सा भजन हम पेश करने वाले हैं और ये भजन हम पेश करते हैं सभी दुखी प्राणियों के लिए।

अभी आप सुन रहे थे जिनके हृदय श्री राम बसे तुम और का नाम लियो ना लियो, और ये सुंदर सा भजन हमने पेश किए हैं सभी दुखी प्राणियों के लिए। किशोरडा आपको सुनाने वाला है आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है।

जिंदगी क्या है यादों की बारात, जख्मों की बारात। अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों, द टाइटल फ्रॉम द मूवी रास्ते का पत्थर, द माइटी मुकेश जी की आवाज में आप सुनेंगे।

वो तेरे प्यार का हम एक बहाना था सनम, अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों, रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा।